0: It's 7:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस फन बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
0: गली मोहल्लों में सफाई का खास ख्याल रखें, कहीं पर पानी खड़ा ना होने दें। डेंगू जानलेवा मर्ज है, इलाज से बेहतर एहतियात है। This public service message is brought to you by FM 100.
2: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदान जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.

0: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्रा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
1: अगली गाड़ी से रास्ता लेने के लिए दिन में हॉर्न और रात में बत्तियों का इस्तेमाल कीजिए और रास्ता मिलने का इंतजार कीजिए।
2: दिस मैसेज वॉज ब्रॉट टू यू बाई FM 100 पाकिस्तान।
3: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365।

0: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रैच करें और पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
1: दिस पब्लिक सर्विस मैसेज इज ब्रॉट टू यू बाय FM 100। बाइक चलाते वक्त हेलमेट का इस्तेमाल कीजिए, ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी कीजिए। लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365। FM 247365।
2: सोशल मीडिया सार्फीन खसूसन नौजवान नस्ल के लिए इंटरनेट के मनफी पहलुओं की आगाही इंतहाई जरूरी है। तोहीन रसालत, इस्लाम और रियासत मुखालिफ, फौश मवाद और झूठी खबरें इंटरनेट पर डालना या शेयर करना काबिले सजा जुर्म है। लिहाजा हर किस्म के गैर कानूनी मवाद को इंटरनेट और सोशल मीडिया पर शेयर करने से गुरेज करें। ऐसे गैर कानूनी मवाद को हटाने के लिए PTA और ऐसे अफराद के खिलाफ कार्रवाई के लिए NCCIA से रुजू करें। ये मुफाद आमा का पैगाम अब तक पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है।
3: बैंकिंग सहूलियात जैसा कि माइक्रो फाइनेंस एप्स, जैज कैश, इजी पैसा और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अमूमन सारिफ के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के साथ मुंसलिक होते हैं, जिसके जरिए ये अकाउंट्स न सिर्फ फाल किए जाते हैं बल्कि किसी तब्दीली की सूरत में तस्दीक के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर कोई सिम आपके नाम से हटा दी जाए या तवील अरसे तक इस्तेमाल न होने की वजह से रिसाइकल होकर दोबारा जारी कर दी जाए तो यही नंबर किसी दूसरे शख्स को दिया जा सकता है। और अगर बरवक्त एहतियाती तदाबीर इख्तियार न की जाए तो नया सारिफ इस नंबर से मुंसलिक आपके सोशल मीडिया या दिगर डिजिटल अकाउंट्स तक रसाई कर सकता है। ऐसे अकाउंट से की जाने वाली किसी भी गैर कानूनी, गुमराह कोनी या तौहीन आमेज सरगर्मी की जिम्मेदारी असल अकाउंट होल्डर पर आयद हो सकती है, जिसके नतीजे में कानूनी पेचीदगियां और शोहरत को नुकसान पहुंचने का खदशा होता है। इसी तरह अगर पुराने नंबर से मुंसलिक बैंकिंग या मालियाती एप्स महफूज न की जाए तो माली धोखाधड़ी और गलत इस्तेमाल का खतरा भी पैदा हो सकता है। अपने ऑनलाइन तहफ्फुज के पेश नजर ये इकदाम जरूर उठाएं। जैसे ही कोई नंबर अपने नाम से हटाएं या तब्दील करें, फौरन अपने तमाम सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अपडेट कर लें। अपने बैंक, माइक्रो फाइनेंस और पेमेंट ऐप्स में हमेशा अपना मौजूदा और फाल नंबर रखें। अकाउंट्स में मजबूत सिक्योरिटी फीचर्स फाल करें, जैसा कि 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन और अकाउंट रिकवरी की सेटिंग्स। डिजिटल तहफ्फुज़ का आगाज सिम के जिम्मेदाराना इस्तेमाल से ही मुमकिन है। बरवक्त और पेशगी इकदाम आपकी शनाख्त, माली तहफ्फुज़ और कानूनी हैसियत में मददगार साबित होते हैं। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम PTA।

0: FM 100's time check. It's 8 a.m.
1: महिराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबिंग सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉब जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
2: सर सब नाइट्रोफॉस की बोरी पे लगा 9 हिंसों का स्टिकर कोड अपने नाम और इलाके के साथ 0300 0300 641 पर भेजें या सर सब पाकिस्तान ऐप के जरिए अपनी एंट्री रजिस्टर करवाएं और मौका पाएं उम्र टिकट मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन जैसे ढेरों इनामात जीतने का। एंट्री भेजने के बाद बोरी और स्टिकर संभाल के रखें। मजीद मालूमात के लिए सर सब हेल्पलाइन पर कॉल करें। तो सर सब नाइट्रोफॉस को लगा और जीत ताजा।
3: आजादी का जश्न अब बाटा के संग। बाटा लाया है जबरदस्त आजादी ऑफर, पूरे स्टॉक पर फ्लैट 20% डिस्काउंट। अपना फेवरेट शूज अब पाए जबरदस्त बचत के साथ।
4: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्ररा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इनाम की वसूली तक कार्ड को महफूज रखें। इनाम निकलने की सूरत में मुकर्ररा डीलर्स, कंपनी के दफातर या करीबी सोना सेंटर से राब्ता करें।
5: PTCL फ्लैश फाइबर आजादी ऑफर, लगाएं सिर्फ ₹4,999 में और पाएं फ्री शॉक एंड्रॉइड टीवी बॉक्स वर्थ ₹15,000, फ्री 100 Mbps इंटरनेट स्पीड 6 महीने के लिए, 500 ऑल नेट मिनट्स और बहुत कुछ। तो आज ही नया कनेक्शन लगाएं। कॉल 1218 या UPTCL ऐप डाउनलोड करके सब्सक्राइब करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, शराइत जवाबित लागू है।
0: This program is brought to you by
6: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja,
2: and Sir Sub's Nitro Force ko laga aur jeet ja.
7: Bain ul aqwami safar par rawana hone wale mutawajjo hoon. Aisi online apps aur platforms se ijtinab kare jo paison ki ivaz kisi namaloom shakhs ka saman aapke apne saman ke sath le jane ke liye tarjeeh dete hain. ये आसान कमाई का तरीका तो नजर आता है, लेकिन हकीकत में खतरनाक जाल है। मंशियात फरोश इन्हीं तरीकों को इस्तेमाल करके मंशियात स्मगल कर रहे हैं। याद रखें, अगर आपके सामान से मंशियात बरामद हुई तो कानूनन इस जुर्म के जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। खबरदार, किसी अजनबी का सामान दौरान सफर अपने साथ ले जाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है।
8: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
9: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے۔
10: وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے۔
11: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
12: ہماری ذمہ داری ہے۔
13: خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں۔
8: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
0: Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.
14: FM100. 31 साल FM100 आपकी आवाज। अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान।
15: अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान।

0: 8:15 AM. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? श्वाबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरती बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
2: Did you know what Bata is bringing? 50% cashback और नई गाड़ी सिर्फ स्कूल शूज पर। ऐसी ऑफर्स अब कहां?
0: This program is brought to you by
3: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja,
0: and Sarsabz Nitro Force ko laga aur jeetta ja.
4: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

अच्छा जहर देख के पीता देखे पीता इश्क सोच के कीता देखी कीता दिल देके दिल लैंड दी आस रखी वह बुलाया

0: आम चीजों पर समझौता क्यों करें। श्वाबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें खरीदें और पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
2: Well, it's happening आज भी, so keep up. बाटा पर जैस कैश से 50% कैश बैक और होंडा एलेंट्रा जीतने का मौका
3: at shopping of 5,000 rupees
2: only. And you're still here? किसका इंतजार है? भागो!
4: PTCL Flash Fiber आजादी ऑफर, लगाएं सिर्फ ₹4,999 में और पाए फ्री शॉक एंड्रॉइड टीवी बॉक्स वर्थ ₹15,000, फ्री 100 Mbps इंटरनेट स्पीड 6 महीने के लिए, 500 ऑल नेट मिनट्स और बहुत कुछ। तो आज ही नया कनेक्शन लगाएं, कॉल 1218 या UPTCL ऐप डाउनलोड करके सब्सक्राइब करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, शराइत सवाबित लागू है।
5: 100 FM. This song is brought to you by EcoStar.

0: It's 9:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja. आजादी का जश्न अब बाटा के संग. बाटा लाया है जबरदस्त आजादी ऑफर. पूरे स्टॉक पर फ्लैट 20% डिस्काउंट. अपना फेवरेट शूज अब पाएं जबरदस्त बचत के साथ.
1: PTCL फ्लैश फाइबर आजादी ऑफर लगाएं सिर्फ ₹4,999 में और पाएं फ्री शॉक एंड्रॉइड टीवी बॉक्स वर्थ ₹15,000, फ्री 100 Mbps इंटरनेट स्पीड 6 महीने के लिए, 500 ऑल नेट मिनट्स और बहुत कुछ. तो आज ही नया कनेक्शन लगाएं. कॉल 1218 या UPTCL ऐप डाउनलोड करके सब्सक्राइब करें. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई. शराइत और जवाबित लागू हैं.
0: This program is brought to you by
2: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
3: And Sarsabz Nitro Force ko laga aur jeetta ja.
4: Khawateen o hazrat, manshiyat wo zeher qatil hai jiski sanjeedgi ka ehsaas insaan ko tab hota hai jab ye zeher hamari ragon mein zahir kar chuka hota hai. वक्ती सुरूर और मजे का लिबादा उड़े ये लानत गैर महसूस तरीके से हमारी नौजवान नस्ल को अपने शिकंजे में ले रही है. मंशियात की लानत में गिरफ्तार होने की एक बड़ी वजह बुरी सोहबत है, जिसको अमूमी तौर पर हम नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि दरअसल इस अमल का ताना बाना बुरी सोहबत और मेल जोल से जाके जुड़ता है. घर दिल से लौटना, वालदेन और घर वालों से नजरें चुराना, खानदान और अहबाब की महफिलों से गुरेज करना, गैर मामूली अखराजात में इजाफा, ये सब इसकी बड़ी अलामत है. खुदा रा अपने बच्चों पे नजरें रखें ताकि वो ताहयात आपकी नजरों के सामने रह सके. हमारा आज़म एक कौम एक मंजिल और मंशियात से पाक पाकिस्तान.
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
5: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
6: FM 247365. FM 100. आपका अपना रेडियो स्टेशन.

0: It's 10:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
2: रोज सुबह अपने छोटे भाई को यूनिवर्सिटी के लिए पॉकेट मनी ट्रांसफर करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज़ कैश ऐप नाउ।
3: Did you know what Bata is bringing? 50% cashback aur nayi gaadi sirf school shoes par. Aisi offers ab kahan?
4: Sona se hai kamyabi scheme ke tehet card ko scratch karein aur paayein beshumar kimti inaamat.
5: FM 100 like us on facebook.com/fm247365.
6: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरूने मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो रास निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।

0: जिंदाबाद।
1: दिस सॉन्ग इज ब्रॉट टू यू बाय इक्वेस्टार।
2: FM 100। लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365।

0: It's 10:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja. आज सुबह गाड़ी में अपने पैसों से पेट्रोल डलवाना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ।
1: आजादी का जश्न अब बाटा के संग। बाटा लाया है जबरदस्त आजादी ऑफर, पूरे स्टॉक पर फ्लैट 20% डिस्काउंट। अपना फेवरेट चूज अब पाएं जबरदस्त बचत के साथ।
2: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें खरीदें और पाएं बेशुमार कीमती इनामात।
3: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखा दही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कवानीन के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराहे करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
4: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सरदर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें। गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें। लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें। मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
5: क्या आप जानते हैं कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स की जानिब से मुख्तलिफ वैल्यू एडेड सर्विसेज फराहम की जाती हैं? इन सर्विसेज में रिंगटोन्स, ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट्स, मिस्ड कॉल अलर्ट, इंटरनेट बंडल्स, गेम्स और दीगर मालूमाती सहूलियात शामिल हो सकती हैं। ताहम बाज़ औकात ये मुशाहिदा सामने आया है कि सारिफ की इजाजत के बगैर कोई वैल्यू एडेड सर्विस फाल हो जाती है या बैलेंस से रकम कट जाती है, जबकि सारिफ को इसका इल्म भी नहीं होता। याद रखें कि वैल्यू एडेड सर्विस की फालियत के लिए सारिफ की तस्दीक जरूरी होती है, जिसके लिए अमूमन ओटीपी की तस्दीक या मखसूस यूएसएसडी को डायल करना लाजिम होता है। याद रखें, पीटीए टेलीकॉम ऑपरेटर्स को वैल्यू एडेड सर्विस खुदकार तौर पर एक्टिवेट करने की इजाजत नहीं देता। अगर आपने ना तो ओटीपी शेयर किया है और ना ही कोई कोड डायल किया है तो ऐसी सर्विस फाल नहीं होनी चाहिए। अगर आपके साथ भी ऐसी सूरत हाल पेश आए तो परेशान होने की जरूरत नहीं। सबसे पहले अपने मुतल्लिका टेलीकॉम ऑपरेटर से राब्ता करें और बाकायदा शिकायत दर्ज करवाएं। ऑपरेटर आपको एक शिकायत नंबर फराहम करेगा। अगर मुकर्रा वक्त के अंदर आपका मसला हल ना हो तो आप पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी के ऑनलाइन पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। शिकायत के अंदराज का तरीकाकार ये है कि सबसे पहले वेबसाइट complaint.pta.gov.pk पर जाएं। शिकायत के अंदराज के लिए सारिफ को अपने नाम और शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के जरिए एक यूजर प्रोफाइल बनाना होगा। इसके बाद साइन अप के ऑप्शन पर क्लिक करें और मतलूबा मालूमात फराहम करें, जिनमें नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, राब्ता नंबर, शहर का नाम और पासवर्ड शामिल होंगे। इसके बाद सर्विस फराहम कुनंदा की किस्म और दीगर मतलूबा मालूमात फराहम करें।
6: اگر آپ کی شکایت کسی موبائل نیٹورک آپریٹر سے متعلق ہے تو اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے پاس وہ شکایت نمبر موجود ہو جو آپ کو آپریٹر کے پاس شکایت درج کراتے وقت فراہم کیا گیا تھا، کیونکہ پی ٹی اے کے پاس شکایت کے اندراج کے لیے یہ نمبر دینا ضروری ہوتا ہے۔ اب کمپلینٹ نمبر درج کریں اور کمپلینٹ سمری میں اپنی شکایت کی تفصیل لکھیں۔ ضرورت کے تحت متعلقہ فائل بھی منسلک کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد قواعد و ضوابط قبول کرتے ہوئے اپنی شکایت باقاعدہ طور پر سبمٹ کر دیں۔ شکایت سبمٹ ہونے کے بعد آپ کو ایک ریفرنس نمبر موصول ہوگا جس کے ذریعے آپ اپنی شکایت کا سٹیٹس بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے پی ٹی اے کے ٹول فری نمبر 0800-55-055 پر رابطہ کریں۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے۔
7: یہ مفاد عامہ کا پیغام اب تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔
8: Back to back, back to back. Only music, no RJ talk.
9: Only music, no RJ talk.
8: This is FM 100.
10: Come on.

0: FM 100's time check. It's 11 a.m.
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्रर डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इनाम की वसूली तक कार्ड को महफूज रखें। इनाम निकलने की सूरत में मुकर्रर डीलर्स कंपनी के दफातर या करीबी सोना सेंटर से राब्ता करें।
0: खवातीन और बच्चों के हकूक का एहतराम हम सब की जिम्मेदारी। दिस पब्लिक सर्विस मैसेज इज ब्रॉट टू यू बाय FM 100।
2: कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मोहतात रहें। अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें। हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है। याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है। हुकूमत पाकिस्तान।
0: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
3: Us on facebook.com/FM247365.
4: Let's celebrate
0: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
4: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: It's 11:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? श्वाबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जर्नल होम्यो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
2: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रैच करें और पाए बेशुमार कीमती इनाम.
3: कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मोहतात रहें. अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें. हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है. याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है. حکومت پاکستان.
0: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
4: ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایف ایم 24/7/365. ایف ایم 24/7/365.

0: It's 11:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें खरीदें और पाएं बेशुमार कीमती इनामात।
3: Hi friends, I'm Mikal Zulfikar, and today I'm not speaking to you as a public figure, but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle. But they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs and let's stand together.
0: Ye paigham hukumat e Pakistan ki janib se pesh kiya gaya.
4: पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से तमाम मोबाइल फोन सार्फीन को आगाह किया जाता है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि उनके कंप्यूटराइज कौमी शनाख्ती कार्ड फाल होने चाहिए। याद रखें, अगर आपके जेर इस्तेमाल सिम के साथ मुंसलिक शनाख्ती कार्ड मंसूख कर दिया गया है या इसकी मियाद खत्म हो गई है या शनाख्ती कार्ड का हामिल फर्द वफात पा गया है तो आपकी मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल की जा सकती है। लिहाजा किसी भी जहमत से बचने के लिए मोबाइल फोन सार्फीन को चाहिए कि जिन शनाख्ती कार्ड की मियाद खत्म हो चुकी है उनकी फौरन तजदीद करवाएं। शनाख्ती कार्ड की मनसूखे से मुतालिक किसी भी मसले के हल के लिए नादरा से रजू करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि सिम किसी वफाशुदा फर्द के शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड ना हो। अगर आपकी सिम किसी वफाशुदा शख्स के शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड है तो कानूनी वारिस मुतलका कंपनी के सर्विस सेंटर मजाज फ्रेंचाइजीज पर जाकर जरूरी दस्तावेजात जमा करवा कर सिम की मलकियत अपने नाम करवा सकते हैं। शनाख्ती कार्ड की बरवक्त तजदीद मोबाइल फोन सार्फीन के तसलसल को यकीनी बनाने में मददगार साबित हो सकती है। पीटीए आपके शनाख्त के तहफ्फुज और सार्फीन को महफूज टेलीकॉम सर्विसेज की फराहमी के लिए पुरअज़्म है। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम पीटीए।
5: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/fm247365 FM 247365

0: اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے. اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں اور نشانہ ہم سب. ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں. ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے. وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے, بے روزگار نوجوان, ضرورت مند خاندان, پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب, بڑی نوکری, تیز دولت, بیرون ملک سفر, اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں, جن سے بدامنی, خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں, ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے. جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے. آپ کی تصویریں, پہچان, فون, سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے. تو یاد رکھیے, کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے. کوئی مشکوک چیز, کال یا پیشکش ہو, فوراً رپورٹ کیجیے. حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے, کیونکہ ہر لفظ, ہر کلک, ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا. گلی محلوں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں, کہیں پر پانی کھڑا نہ ہونے دیں. ڈینگی جان لیوا مرض ہے, علاج سے بہتر احتیاط ہے. دس پبلک سروس میسج از براٹ ٹو یو بائی ایف ایم 100. ایف ایم 100, لائک اس آن facebook.com/fm247365. ایف ایم 247365.
2: آل رائٹ, تو بریک کے بعد ہم آ چکے ہیں واپس, اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے پروگرام کا حصہ بننے کے لیے آپ نے اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جانا ہے, کے ایچ آئی لکھنا ہے, اسپیس دینا ہے, اپنا میسج ٹائپ کر کر سینڈ کر دینا ہے 3636 پہ. تو آپ ہمیں میسج بھیجیں اور بتائیں کہ جی کیا ریسیپی آپ کو ردا سے پوچھنی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ کوئی ٹپ بھی اگر آپ کو لینی ہے. ہمارے پاس میسجز کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے جسے ہم ایک ایک کر کر شامل کریں گے. ردا, آپ نے آج بھی کچھ لنچن بنانے کا سوچا ہے, گھر جا کے بہن کریں گے؟
3: آج ابھی جاؤں گی تو پھر ہی دیکھتی ہوں. کل وہ بیٹے نے کہا کہ بیف کڑھائی بنا دیں, تو کل میں نے بیف کڑھائی بنا لی تھی, تو ابھی دیکھتے ہیں. اصل میں چھٹی کا دن ہے نا, تو پھر یہ لوگ ان سے بھی ذرا پوچھ لیتی ہوں کہ بتا دینا کیا بنانا ہے کیا نہیں.
2: صحیح بات ہے,
3: تو بس یہی بنے گا. اور ایک تھوڑی سی میں بناؤں گی وہ کھچڑی, وہ شاہنور کے لیے آلو والی جو کھچڑی بنتی ہے وہ اس کے لیے بنا لوں گی. ابھی میں جاؤں گی تب تک تو گیس ہوگی, آ جائے گی نا ایک بجے تک. تو
2: بچوں کی وہ کھچڑی لگتی بڑی مزے کی ہے. ویسے
3: صحیح کہہ رہے ہیں,
2: بہت مزے کی لگتی ہے.
3: اچھا میں اس میں نا ایک دو آلو ڈال دیتی ہوں تاکہ کھا لیں بچے, کھا لیں
2: اس میں وہ گلے ہوئے, زیادہ گلے ہوئے چاول, اور بہت بہت مزے کی لگتی ہے. اور ساتھ میں اگر آپ دہی بھی لے لیں تو بھائی مزہ ہی آ جاتا ہے.
3: وہ اصل میں شروع سے اپنے بچوں کے لیے بناتی تھی, تو اب ظاہر ہے بیٹی کی بیٹی ہے شاہنور ہے, تو اس کے لیے میں بنا لیتی ہوں. مسور کی دال ڈال دیتی ہوں اور اس کے اندر وہ چاول ہوتے ہیں ایکول کوانٹٹی میں, تو ایک عدد آلو اس میں ڈال دیتی ہوں, تو وہ بڑے شوق سے بچے کھا لیتے ہیں.
2: صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات ہے. خیر بھائی, رضا نے اپنے لنچ کے بارے میں بھی آپ لوگوں کو بتا دیا ہے, اب ساتھ ہی ساتھ آپ کے میسج کو بھی ہم ایڈ کرتے ہیں. تو بھائی رضا, ہمارے پاس پہلا میسج آ چکا ہے. رضا باجی, ہمیں حلوہ پوری کا ناشتہ بتا دیں, صبح بنانے کا ارادہ ہے. آئی مین کل صبح بنائیں گے ظاہر ہے.
3: اچھا چلیں جی, آپ نوٹ کر لیجیے گا حلوہ پوری کا. اچھا اس کے لیے, پوری کے لیے تو میں نے ہمیشہ بتایا فائن آٹا لے لیجیے گا, سمپل طریقے سے اس کو آپ نے گوندنا ہے. گوند کے آدھا گھنٹہ رکھ دیجیے گا. اگر فائن آٹا اگر آپ کو نہیں سمجھ آتی یا نہیں ہے, تو وہ جو آپ بے شک آپ میدا لے لیجیے گا, دو کپ, ایک کپ وہ لال والا آٹا مکس کر لیجیے گا. ٹھیک ہے, اس طرح سے کر لیجیے گا. اس کے بعد چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا کے اس پہ گھی لگا کے رکھ دینا, آدھا گھنٹہ آپ چھوڑ دینا. پھر اس کے بعد خوب اچھی طرح آئل گرم ہوگا, اس کو ہلکا سا بیلیں, ہاتھ سے جھٹک کے ڈال دیں, تو زبردست قسم کی پوریاں جو ہے تیار ہو جائیں گی. اچھا اس کے بعد جو آلو کی ترکاری ہے وہ تو بڑے آسان طریقے سے بنتی ہے. کیا کرتے ہیں, چھوٹے آلو لے لیجیے گا, اس کو اچھی طرح سے دھوئیے گا, اوپر سے جو مٹی وغیرہ ساری اتر جائے اچھی طرح سے دھوئیے گا, اس کے چھلکے نہ اتارے گا. اب اس کو آپ نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرنے ہیں. ٹکڑے کر کے اب اس کے اندر آپ نے, جیسے آدھا کلو لینے ہیں تو کم سے کم دو گلاس پانی, آدھی چائے کا چمچ نمک, یہ ڈال کے اس کو آپ نے چڑھا دینا ہے. ٹھیک ہے, آلو, آدھی چائے کا چمچ نمک, ये डाल के इसको चढ़ा देना। एक से दो उबाल है, एक चाय का चम्मच आपने राई डालनी है, एक चाय का आधी चाय का चम्मच कलौंजी, इसके बाद आपने आधी चाय का चम्मच मेथी दाना और दो चाय के चम्मच भर के आपने लाल मिर्च पाउडर के डाल देने हैं। एक चुटकी के जितना बिल्कुल जरा सा जर्दे का रंग। अब ये देखेंगे जब बहुत अच्छे से गल गए, इसको थोड़ा सा आपने घोटना है तो एक खाने का चम्मच कॉर्नफ्लोर को पानी में घोट के कॉर्नफ्लोर डाल देना, तो उससे थोड़ा सा ये गाढ़ा सा हो जाएगा। साथ में ही आपने इसके अंदर डाल देने दो से तीन खाने के चम्मच ऑयल, बीच में मिक्स कर लीजिएगा। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब चूल्हा बंद करके इसके अंदर दो खाने के चम्मच आपने सिरका डाल देना, हल्के से खट्टे होते हैं, दो खाने के चम्मच आपने सिरका डाल देना, हरी मिर्च और ऊपर हरा धनिया डाल देना, तो ये आलू की तरकारी तैयार हो जाएगी।
2: ओके,
3: अब चनों को क्या करना है, एक पाव चने ले लीजिएगा, उसको धो के साफ करके उसमें आपने थोड़ा सा खाने का सोडा डाल के आपने कम से कम 4 से 5 गिलास पानी डाल के उसको ढक के रख देना, 4 गिलास पानी काफी ढक के रख देना। अब वो फूल जाएंगे, डबल हो जाएंगे अच्छी तरह से, फिर आपने क्या करना है उसी पानी के साथ ही, अच्छा ये रात पूरी रात अगर आपने रखे हैं तो फिर धो लीजिएगा, अगर दिन के टाइम पे 2-3 घंटे के रखा है तो फिर धोने की जरूरत नहीं है, उसी पानी के साथ आपने चूल्हे पे इसको चढ़ा देना, इसको पकने देना पकने देना। जब देखेंगे बहुत अच्छे से गल गए, अब लकड़ी के चम्मच से इसको अच्छी तरह से घोट लेना, घोट लिया ये थोड़े से गाढ़े से हुए, अब आपने इसका चूल्हा बंद करना है। अब दूसरी साइड पे आपने ऑयल गरम करना है, उसमें राई कलौंजी मेथी दाना कुटी हुई मिर्च साथ में थोड़ी सी हल्दी और साथ में नमक, अगर उसमें नहीं डाला तो नमक और कड़ी पत्ते, इसको फ्राई करके सर तड़का लगा देना, तड़का लगा लेना, बेहतरीन किस्म के चने और आलू की तरकारी और पूरी तैयार हो जाएगी।
2: बिल्कुल ठीक है,
3: हलवे का भी बता ही देते हैं।
2: हलवे हाँ हम मुकम्मल ही कर देते हैं।
3: हाँ मुकम्मल कर देते हैं। अच्छा हलवे के लिए ना बहुत कम सूजी का इस्तेमाल होता है, तो आपने क्या करना है, आप ले लीजिएगा तकरीबन आधा कप की इतनी सूजी, उसके अंदर आधा कप घी डालेगा, उसको आपने फ्राई करना है, जिस तरह से हल्का सा जैसे लाइट सा कलर आया ब्राउन ना कीजिएगा। तो अब आपने क्या करना है, इसमें 2 गिलास आपने पानी डाल देना है चूल्हा बिल्कुल हल्का करके, इसके बाद इसके अंदर आपने आधा कप चीनी, 2-3 इलायची तोड़ के डाल देना, थोड़ा सा जर्दे का रंग डाल देना। अब इसको हल्की आग पे पकने देना, जब देख ले पूरा गाढ़ा हो गया चूल्हा बंद कर लीजिएगा, और ऊपर कुछ बादाम कुछ डालने तो वो डाल लेना, तो इस तरह से सूजी का हलवा पीला वाला तैयार हो जाएगा।
2: बिल्कुल ठीक है, तो मृदा ने आपको प्रॉपर हलवा पूरी का नाश्ता बता दिया है, जो आप घर में बनाएं और खाएं एंजॉय करें। कुछ भी है, बहुत सारे नाश्ते के ऑप्शंस हमारे पास मौजूद होते हैं, लेकिन जो बात एक हलवा पूरी की है ना वो एक अलग ही है, मतलब बहुत मजा आता है। ऐसे हम खाने के लिए घर से बाहर भी जा रहे होते हैं कि भाई हलवा पूरी का नाश्ता करते हैं, लेकिन इस नाश्ते को आप बासानी घर में भी बना सकते हैं, और इसकी डिटेल रेसिपी रदा आफ्ताब ने आपसे शेयर कर दी है, सो यू मस्ट ट्राई।
3: अगर घर में आपके जिस तरह से 5-6-8 लोग होते हैं फिर ये बनाने का जब भी मजा आता है, अगर एक दो हो तो फिर कहते हैं चलो भी बाजार से खरीद लेते हैं, तो ये बड़ी जबरदस्त लगती है। तो हमारे यहाँ ये होता था जब काफी सारे लोग होते थे तो फिर मैं मिल के बना लेती हूँ, अगर ये दो बच्चों की बात करें तो बेटा कहता मैं तो वैसे ही नहीं खाता, मुझे पसंद ही नहीं है
2: ये बात तो सही है,
3: वो दुआएं वो कहती मैं तो डाइट पे हूँ, तो ये इसी वजह से रह ही जाती है। तो जब सारे लोग काफी होते थे, जैसे कभी कभी बहनें आ गई या कोई और आ गया, तो वो फिर हम लोग इस तरह से करके हलवा पूरी बना लेते थे।
2: सही बात है, बिल्कुल सही रदा कह रही है कि वाकई में लोग ज्यादा होना तो उससे बनाने का मजा है, एक एक दो दो लोगों में वो वाला मजा नहीं आता। और वाकई में अब ये भी बड़ा मसला होता है, कोई डाइट पर है, कोई कुछ है, कोई कार्ब्स नहीं ले रहा, मतलब हर कोई एवरीवन इज लिविंग अ डिफरेंट लाइफस्टाइल, तो उसमें है, लेकिन फिर भी भाई जो हलवा पूरी का नाश्ता है वो एक ओजी नाश्ता है जो कि सबका बड़ा फेवरेट है। हर चीज की वजह से फिर ने आपसे शेयर कर दिया, उसी के साथ साथ मजीद मैसेज भी हमारे पास आ रहे हैं जिसे हम शामिल करेंगे, और आप भी अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाएं, केयर ट्राई लिखें, स्पेस दें, अपना मैसेज टाइप करें और सेंड कर दें 3636 पे, और अपनी पसंद की रेसिपीज रिदा आफ्ताब से पूछें। अभी हलवा पूरी का नाश्ता बताया तो छोले का जिक्र हमने किया ही कि छोले किस तरह बनते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ हमारे पास एक और मैसेज आ गया कि मुर्ग छोलों की रेसिपी बताते हैं।
3: अच्छा मुर्ग छोलों की, अरे ये बड़े मजे
2: बड़े मजे के, मेरे भी बड़े फेवरेट हैं,
3: बहुत अच्छे लगते हैं मुर्ग छोले, मुझे भी बहुत पसंद है। अच्छा इसके लिए क्या है कि आपने क्या करना है, जैसे आपने आधा किलो चने लेने हैं तो आप क्या कीजिएगा, इसमें 1 किलो चिकन लीजिएगा, ठीक है 1 किलो चिकन ले लीजिएगा। आपने चनों को इसी तरह से धो के साफ करके उसके अंदर आधी चाय का चम्मच खाने का सोडा डाल के उसके अंदर पानी डाल के उसको ढक देना, तीन चार खंडे के, फिर एक चने को तोड़ के देखिएगा अगर वो बिल्कुल सही तरह से अंदर तक अच्छी तरह से भीग गया, अगर नहीं भीगा होता तो अंदर वो आग की तरह उसमें व्हाइट सा डॉट सा आ जाता है, तो इसको मजीद आधा घंटा एक घंटा और रहने देना,
2: ठीक है।
3: फिर उसी पानी के साथ हल्की आग पे इसको पकने देना ताकि हल्की आग पे बड़ा अच्छा गलते हैं, अगर हम प्रेशर कुकर में डाल लेते हैं ना वो फिर इसका टेस्ट भी नहीं आता, बस हल्की आग पे आपने इसको रख देना तो हल्की आग पे वो पकता रहेगा, ठीक है।
2: ठीक है,
3: अब आपने क्या करना है मुर्ग को किस तरह से तैयार करना है, आपने क्या करना है आधा कप ऑयल लीजिएगा, एक बिल्कुल छोटी सी प्याज को ब्राउन कीजिएगा, प्याज ब्राउन हुई तो उसके अंदर क्या करना है आपने एक चाय का चम्मच काली मिर्च, एक चाय का चम्मच जीरा, दो तेज पत्ते, एक टुकड़ा दालचीनी का और दो अदद आपने लौंग, ठीक है, ये प्याज के साथ आपने फ्राई करनी है। अब इसके अंदर एक खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल देना। ये डालने के बाद अब आपने क्या करना है, आपने मुर्गी लेनी है वो इसमें डालेगा, उसको अच्छी तरह से आपने भुनाई कर लेनी है, ठीक है। अच्छी तरह से आपको लगे उसका कलर व्हाइट हो गया, अब आधा कप पानी डालेगा, पानी के अंदर दो चाय के चम्मच लाल मिर्च पाउडर, दो चाय के चम्मच पिसा धनिया, एक चाय का चम्मच नमक, ठीक है, और आधी चाय का चम्मच हल्दी डाल के अब इसको दोबारा मसाले के साथ भुनेगा। जरा इसमें ऑयल जरा ज्यादा डलता है, अच्छी तरह से इसकी जब भुनाई होगी तो अब आपने क्या करना है इसके अंदर दो कप पानी डाल के इसको गला लीजिएगा। जब ये प्रॉपर गल जाएंगे, अब जो चनों को आपने उबाल के रखा है वो चने डाल के हल्की आग पे आपने 15-20 मिनट तक पकाना है। आखिर में बारीक कटी हुई अदरक, हरी मिर्चें, हरा धनिया, मोटी मोटी हरी मिर्चें, हरा धनिया, उसके साथ आपने इसके अंदर थोड़ा सा पिसा गरम मसाला, बेहतरीन किस्म के मुर्ग छोले जो है तैयार हो जाएंगे।
2: ऑलराइट, तो मुर्ग छोले भी रदा ने आपको बता दिए हैं जो बन गए हैं, अब आपने ऐसे ही बनाने हैं और खाने हैं, और ये गरम गरम नान के साथ बहुत मजे के लगते हैं, थोड़ा शोरबा हो और आप मजे का निवाला बना के खाएं। हैदराबाद मेरा मुर्ग छोले खाने का दिल चाहने लगा, क्योंकि वाकई में ये मैं जैसे कहती हूँ ना, लंच का भी हम जिक्र करते हैं, आपको रेसिपीज ज्यादा बता रही होती हैं तो उसमें हम याद करते हैं कि कितना टाइम हो गया कि इस चीज को नहीं खाया नहीं पकाया, तो इससे याद आ गया। आज मैं सोचूं कि मम्मी से कहूं कि आज मुर्ग छोले बना लेते हैं। अच्छा, गुड ऑप्शन।
3: अभी कहते भिगो देते,
2: हाँ मैं यही सोच रही हूँ, अभी मैंने कहा कि नेक्स्ट मैसेज में अम्मी को करती हूँ कि अब वक्त आ गया है कि आज घर में मुर्ग छोले बन जाए।
3: सही बात
2: बिल्कुल ऐसा ही है। खैर भाई, आप लोगों के मैसेजेस को भी शामिल करेंगे, और कल हमने जश्न आजादी मनाई, बड़ा अच्छा कल का दिन गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का, और कल मैंने और रजा ने बहुत सारी जश्न आजादी से रिलेटेड बातें करी, तो बड़ा मजा आया
3: भी की, और अच्छी मैंने काफी जगहों पे मुझे इनवाइट किया गया, काफी जगहों पे गई, बहुत अच्छा रहा कल का दिन, तो बड़ा अच्छा रहा।
2: मतलब कल आप यहाँ से जाने के बाद बहुत सारी जगह गई भी, अल्लाह वाह रजा, वेरी बिजी रूटीन,
3: बड़ा अच्छा रहा, मतलब वो एक अरे
2: खुशी होती है, बिल्कुल
3: दिन को बड़ा अच्छा सैल्यू, बेशक बाद में कुछ ना करें, दूसरे दिन ना करें, तीसरे दिन कुछ ना करें, लेकिन इस दिन को कम से कम इतने दिल से ही लोग याद तो रखते हैं, इसको अच्छी तरह से सेलिब्रेट तो करते हैं, वरना देखिए बच्चे हमारे भूल ही जाएंगे क्या 14 अगस्त थी, क्या कुर्बानियां थी, क्या।
2: बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ये हर साल जब हम इस दिन को भरपूर तरीके से मनाते हैं ना, तो हमें इस दिन की अहमियत पता चलती है, लोगों की कुर्बानियां, सेक्रीफाइस, ये सारी चीजें हमें नजर आती हैं कि किस तरह हमने इस मुल्क को हासिल किया है, और इस मुल्क की इस आजादी को मनाना हम सबका फर्ज है, और इंडिपेंडेंस डे इसीलिए लोग भरपूर तरीके से मनाते हैं, हरे सफेद कपड़े पहनकर, झंडे लगाकर, और अच्छी बात है ये, लेकिन साथ ही साथ एक ये भी बड़ी जरूरी चीज है कि अपने परचम को इज्जत दें, उसका ख्याल रखें, बाद में 14 अगस्त के बाद अपने परचम को किसी सही मुकाम पर रखें, ये ना हो कि वो जमीन पर गिरा हो, लोगों के पैरों में आए, तो ये परचम आपकी इज्जत है, इसका भरपूर ख्याल रखें, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ 14 अगस्त तक इंडिपेंडेंस डे नहीं मनाया जाता, ये पूरा साल ये मुल्क आपका है, यहां पे आप रहते हैं, तो अपने परचम की इज्जत जरूर करें, उसे ऐसे कहीं गिरा हुआ ना देखें, ना गिराएं, ना ऐसे ही अपनी झंडियों को उतार दें, तो ये बहुत एक जरूरी चीज है।
3: अच्छा, इस दफा बारिश नहीं, वरना
2: हाँ इस दफा तो रिदा कराची पे कोई काल ही पड़ा हुआ है कि बारिशें हुई नहीं रही,
3: वरना हमेशा 13 अगस्त जरूर बारिश होती है, वो हमें याद है, हम बचपन से जब झंडियां लगाते थे तो सुबह देखते थे वो सारी
2: गीली। बिल्कुल ऐसा ही है, सुपर अलिनो की वजह से रिदा इस दफा कराची में बारिश ही नहीं है, सिस्टम ने ना कराची को बड़ा मुतासर किया हुआ है, सो बस उम्मीद है। खैर जी, छोटे से ब्रेक की जानिब चलते हैं, आते हैं वापस ब्रेक के बाद।
4: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्ररा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
5: नशा परेशानियां खत्म करता है, آواز کا سرور ہمیشہ رہتا ہے، یہ ایک لمحے کی کمزوری ہے جو ساری زندگی کا روگ بن جاتی ہے۔ باطلا علمی جہالت اور حماقت سے شروع ہوتی ہے اور سارے خاندان کو تباہ کر دیتی ہے۔ ایسی کوئی کھانے پینے، لگانے یا سرور دلوانے والی اشیاء کا استعمال نہ کریں جس میں نشہ ہو۔ والدین، اساتذہ اور دوست بچوں پر نظر رکھیں۔ ہنسی مذاق میں کی گئی حرکت آپ کی سانسیں بھی ختم کر سکتی ہے۔ نشے سے انکار، زندگی سے پیار۔ منشیات کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے ہماری ہیلپ لائن پر رابطہ کریں۔
6: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا۔
7: ایف ایم 100، لائک اس آن فیس بک .com/FM247365۔ FM 247365۔

0: आजादी का जश्न अब बाटा के संग। बाटा लाया है जबरदस्त आजादी ऑफर, पूरे स्टॉक पर फ्लैट 20% डिस्काउंट। अपना फेवरेट चूज अब पाएं जबरदस्त बचत के साथ।
1: पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बहुत सी औरतों को माली, जिस्मानी, जहनी और जिनसी घरेलू तशद्दुद का सामना करना पड़ रहा है। चाहे आप किसी के शौहर, वालिद, भाई या बेटे हों, अपना स्ट्रेस और फिक्र को अपनी बीवी, बेटी, बहन या वालदा पर हरगिज ना निकालें। हुकूमत पाकिस्तान ने घरेलू तशद्दुद का निशाना बनने वाली औरतों के लिए खुसूसी हेल्पलाइन 1099 के साथ हेल्पलाइन 1099 ऐप का आगाज किया है, ताकि हमारे इदारे उनकी भरपूर मदद कर सकें। अगर आप या आपके जानने वाले घरेलू तशद्दुद का शिकार हैं, तो फौरी तौर पर हेल्पलाइन 1099 ऐप को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें। होम स्क्रीन पर अपना नाम, फोन नंबर और शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज करके साइन अप करें। हंगामी हालात की सूरत में जहां आपकी या किसी की जान खतरे में हो, लाल बटन का इस्तेमाल करें, जिससे मुतल्लिका इदारे आपकी मदद के लिए फौरी हरकत में आ जाएंगे। तफसीली शिकायत के लिए सब्स बटन का इस्तेमाल करें, जिसमें आप तहरीरी शिकायत के साथ वीडियो, तस्वीर और ऑडियो सबूत भी जमा कर सकते हैं। याद रखिए, घरेलू तशद्दुद कानूनन जुर्म है और हम सबको मिलकर इसे रोकना है। तशद्दुद से तहफ्फुज आपका हक है। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।
2: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
3: 100 FM।
4: हाय फ्रेंड्स, I am Mikal Zulfikar, and today I am not speaking to you as a public figure, but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs, and let's stand together.
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
5: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सरदर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो, तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा ना होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें। गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें। लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहने, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
6: पाकिस्तान में व्हाट्सएप हैकिंग के वाकयात में खतरनाक हद तक इजाफा हो चुका है। रोजाना आम शहरी, बुजुर्ग, खवातीन, तुलबा और कारोबार से वाबस्ता अफराद अपने व्हाट्सएप अकाउंट से महरूम हो रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको दो अहम बातों पर रहनुमाई फराहम करेंगे। अगर आपका व्हाट्सएप हैक हो चुका है तो इसे वापस कैसे हासिल किया जा सकता है, और मुस्तकबिल में व्हाट्सएप को दोबारा हैक होने से कैसे महफूज रखा जा सकता है। आइए देखते हैं व्हाट्सएप हैक कैसे होता है। पाकिस्तान में आमतौर पर व्हाट्सएप हैकिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तरीके। आपको व्हाट्सएप या किसी करने वाले के नाम से पैगाम आता है कि आपका अकाउंट वेरीफाई करना है, या ये 6 हिंसों का कोड भेज दें। बाज़ औकात ये पैगाम किसी दोस्त या रिश्तेदार के नंबर से आता है जिसका अकाउंट पहले ही से हैक हो चुका होता है। लोग लाइल्मी या जल्दी में 6 हिंसों का तस्दीकी कोड शेयर कर देते हैं। बस इसी एक गलती से हैकर आपके व्हाट्सएप का मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लेता है। याद रखें, व्हाट्सएप का तस्दीकी कोड कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं किया जाता। ना व्हाट्सएप खुद मांगता है, ना कोई अदारा और ना कोई दोस्त। अगर आपका व्हाट्सएप हैक हो जाए तो फौरन क्या इकदाम उठाने चाहिए। अगर आपका व्हाट्सएप हैक हो चुका है तो घबराए नहीं, अपने मोबाइल फोन से व्हाट्सएप डिलीट करें और दोबारा इंस्टॉल करें। साथ ही अपने दोस्तों और खानदान को किसी और नंबर से इतला दें कि अगर आपके नाम से कोई मशकूक पैगाम आए तो इस पर हरगिज यकीन ना करें। अपना वही मोबाइल नंबर दर्ज करें जो व्हाट्सएप पर रजिस्टर्ड था। व्हाट्सएप आपको SMS या कॉल के जरिए 6 हिंसों का तस्दीकी कोड भेजेगा। ये कोड दर्ज करें। ज्यादातर केसेस में इसी मरहले पर हैकर की रसाई खत्म हो जाती है, क्योंकि व्हाट्सएप एक वक्त में सिर्फ एक डिवाइस को इजाजत देता है। अगर तस्दीकी कोड ना आ रहा ہو یا پن لگا دیا گیا ہو. اگر ہیکر نے آپ کے اکاؤنٹ پر ٹو اسٹیپ ویریفیکیشن پن لگا دیا ہے اور آپ لاگ ان نہیں ہو پا رہے, واٹس ایپ آپ کو آپشن دیتا ہے 7 دن بعد دوبارہ کوشش کریں. 7 دن بعد واٹس ایپ آپ کو بغیر پن کے لاگ ان کرنے کی اجازت دیتا ہے, لیکن صرف اسی نمبر پر. اس دوران یہ باتیں لازمی یاد رکھیں, سم کارڈ اپنے پاس اور فال رکھیں, نمبر بند یا سسپینڈ نہ ہونے دیں, واٹس ایپ بار بار انسٹال نہ کریں, ای میل کے بغیر اکاؤنٹ فال. اگر آپ نے ای میل ایڈریس شامل نہیں کیا اور پن بھی یاد نہیں, واٹس ایپ پھر بھی 7 دن بعد آپ کا اکاؤنٹ فال کر دیتا ہے, بشرطیے کہ سم کارڈ آپ کے پاس ہو. سم کارڈ سب سے اہم ہے. اضافی طور پر آپ اپنے نمبر اور مسئلے کی تفصیل کے ساتھ واٹس ایپ سپورٹ کو ای میل بھی کر سکتے ہیں. رابطوں کو فوری اطلاع دیں. اکاؤنٹ بحال ہوتے ہی اپنے تمام رابطوں کو پیغام بھیجیں, میرا واٹس ایپ ہیک ہو گیا تھا, براہ کرم پچھلے کسی بھی پیغام یا درخواست کو نظر انداز کریں. اس سے آپ کے دوست اور خاندان مزید نقصان سے بچ سکتے ہیں. اب دیکھتے ہیں مستقبل میں ہیک ہونے سے خود کو کیسے بچایا جا سکتا ہے. ٹو اسٹیپ ویریفیکیشن لازمی فالو کریں. سیٹنگز, اکاؤنٹ, ٹو اسٹیپ ویریفیکیشن یا ایک 6 ہندسوں کا پن سیٹ کریں جو صرف آپ کو یاد ہو. ای میل ایڈریس ضرور شامل کریں. ای میل شامل کرنے سے پن دوبارہ سیٹ ہو سکتا ہے. اکاؤنٹ تیزی سے فعال ہو جاتا ہے, ہیکنگ کے امکانات کم ہو جاتے ہیں. تصدیقی کوڈ کبھی کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں, چاہے پیغام دوست کا ہو یا کسی ادارے کے نام سے ہو. کوڈ شیئر کرنا سیدھا اکاؤنٹ ہیک ہونے کے برابر ہے. جعلی لنکس اور آفر سے بچیں. مفت انٹرنیٹ انعامات, سرکاری یا بینک کے جعلی پیغامات سے ہوشیار رہیں. ایسے لنکس پر کلک نہ کریں. واٹس ایپ لنک ڈیوائسز چیک کریں. سیٹنگز, لنک ڈیوائسز, اگر کوئی نامعلوم ڈیوائس نظر آئے تو فوراً لاک آؤٹ کریں. فون لاک اور بایو میٹرک استعمال کریں. اگر فون محفوظ نہیں ہوگا تو واٹس ایپ بھی محفوظ نہیں رہے گا. پن, فنگر پرنٹ یا فیس لاک ضرور فالو کریں. یاد رکھیں, واٹس ایپ ہیکنگ کوئی تکنیکی جادو نہیں بلکہ زیادہ تر انسانی غلطی کی وجہ سے ہوتی ہے. تھوڑی سی آگاہی اور احتیاط سے آپ خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں, اپنے گھر والوں کو بچا سکتے ہیں اور اپنے دوستوں کو نقصان سے بچا سکتے ہیں.
3: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
7: FM 24/7/365

Assalamu alaikum, Pakistan and assalamu alaikum everyone. This is me, Fatma Khan, and aap sun rahe hain FM 100 Pakistan. How are you all? Kya haal hai aap sabke? Kaisa guzar raha hai din? Kya kar liya hai? Kya karne wale hain? Tujhi hungi aapse khoob sari baatein share karenge kuch information aur saath hi saath program mein hoga bahut sara music. बहुत सारी बातें भी होंगी, बहुत सारा म्यूजिक भी होगा. तो जल्दी से करते हैं प्रोग्राम लंच टाइम स्पेशल का बकायदगी से आगाज. फिर वापस आकर आपको तरीकाकार भी बताएंगे, आपसे चिटचैट भी करेंगे, क्योंकि सैटरडे का दिन उम्मन तौर पर हमारे लिसनर्स का दिन होता है. तो होंगी आपसे बहुत सारी बातें, लेकिन पहले प्रोग्राम का बकायदगी से आगाज.

0: It's 1:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्पन बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए गोशा।
2: सोना सेहत कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रैच करें और पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
3: Did you know what Bata is bringing? 50% cashback aur nayi gaadi sirf school shoes par. Aise offers ab kahan?
4: Lunch time, apne colleagues ke saath bill split karna. Ye hai asal azadi. Aapke liye asal azadi kya hai? Download the JazzCash app now.
0: This program is brought to you by
5: Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at 0311117837.
0: FM 100. Like us on Facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: जी तो हो चुका है प्रोग्राम लंच टाइम स्पेशल का बाकायदगी से आगाज। तो अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाएं, क्लियर ट्राई लिखें, स्पेस दें, अपना मैसेज टाइप करें और सेंड कर दें 3636 पे। साथ ही साथ आप लोग फेसबुक पर आरजे फातिमा खान के पेज को भी लाइक कर सकते हैं, वहां पर भी मैंने स्टेटस लगा दिया है, तो आप वहां भी कमेंट कर सकते हैं। जिस टॉपिक पर भी हम बात कर रहे हैं, जिस मौजू को भी हम डिस्कस कर रहे हैं, तो उसका जवाब आप वहां पर भी कॉमेंट के थ्रू दे सकते हैं। सो स्टेटस इज अपडेटेड ओवर देयर ऑल्सो, यानी कि आरजे फातिमा खान की फेसबुक पेज पर भी, और साथ ही साथ रेडियो पर तो हम लाइव जा ही रहे हैं, यहां भी आपके मैसेजेस आ रहे हैं। हमारे पास मैसेज आया है, कहती हैं अस्सलाम वालेकुम लवली आरजे, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूं। कहती हैं आज लंच में निहारी है, आपको मैसेज किया था पेज पर, मुझे मिल गया है आपका पेज। यस बिल्कुल, मुझे पता चल गया है कि लुकवर्ल्ड आपको मेरा पेज मिल चुका है। यस मैंने आपका मैसेज देख लिया था एंड दैट इज सो नाइस, फाइनली आपको मेरा पेज मिल चुका है और मैंने स्टेटस भी वहां पर अपडेट कर दिया है। तो आप जवाब देने के लिए पेज पर भी फेसबुक के कमेंट कर सकते हैं या फिर आप हमें मैसेज भी भेज सकते हैं, जो भी आपको इजी लगे। ऑल राइट भाई, तो आज है 15th of August, कल हमने जश्न आजादी भरपूर तरीके से मनाई और उसके बाद आज कैसा महसूस हो रहा है आपको? कहीं थकन थकन तो नहीं महसूस हो रही? वैसे ये एक अच्छी बात हो गई कि जश्न आजादी के मौके पर हमें कंजेकेटिव 3 छुट्टियां भी एक साथ मिल गई। हमें तो नहीं मिली लेकिन बहुत सारे लोगों को तो मिली है क्योंकि फ्राइडे सैटरडे संडे, और मुझे लगता है कि जिन लोगों का सैटरडे संडे ऑफ होता है ना, उनके लिए फ्राइडे छुट्टी इज अ सच अ ब्लेसिंग। उनकी तो बस दिली दुआ या दिली मुराद ये होती है कि हर गेस्टेड हॉलीडे जो है ना वो फ्राइडे वाले दिन आए ताकि कंजेकेटिव ऑफ्स जो हैं वो मिल जाएं। तो भाई ये तो है कि छुट्टियां बहुत सारी मिली, बड़ा मजा आया और जश्न आजादी भी भरपूर तरीके से लोगों ने मनाई। तो आप लोगों की क्या क्या मसरूफियात रही कल के दिन? कल के दिन हम आपके साथ मौजूद तो थे लेकिन कल हमने कुकिंग स्पेशल में थे, हमने बहुत सारी बातों को डिस्कस तो किया कि किस तरह जश्न आजादी मनाया करते थे एंड ऑल दो, लेकिन आपका कल का दिन कैसा गुजरा और आज का दिन कैसा गुजर रहा है, इस हवाले से भी आप लोग हम तक आगाही जरूर फराहम करें कि आप सबका दिन कैसा गुजर रहा है। और साथ ही साथ ये सवाल हम कैसे भूल सकते हैं कि भाई आपके लंच में क्या है? तो क्या पक चुका है, क्या पकने जा रहा है, क्या पकाने का इरादा है, तो आपके लंच में क्या है ये भी हमें मैसेज या फिर FM1 या साथ ही साथ आप लोग जो है वो आरजे फातिमा खान के पेज पर कमेंट करें और बताएं कि आपके लंच में क्या है। हम कर रहे हैं आपके मैसेज का इंतजार और साथ ही साथ चलते हैं ट्रैक की जानिब, आते हैं वापस ट्रैक के बाद।
1: Shumala

ओके तो भाई लंच में क्या है और कल का दिन आपने कैसे गुजारा? वैसे तो स्टिल छुट्टी चल रही है तो आज का दिन भी आप कैसे गुजारे हैं, लेकिन कल के दिन का बिलखुसूस जिक्र इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कल जश्न आजादी हम सबने मनाई है भरपूर तरीके से। तो किस किस तरीका कार के जरिए आपने मनाई हमें जरूर बताएं। अच्छा भाई, लुकवल के मैसेज आ चुके हैं आरजे फातिमा खान के पेज पे, कहती हैं कल तो मैंने फुल ग्रीन सूट पहना था और खाला के घर पर मनाई 14 अगस्त। आपका दिन कैसा गुजरा? कल मेरा भी दिन बड़ा अच्छा गुजरा। कल हमारी बहन को हमने इन्वाइट किया था, वो भी हमारे घर आ गई थी, तो हमने भी कल जश्न आजादी को कुछ इस तरह बनाया कि हमने बारबेक्यू करके कल जश्न आजादी का दिन जो है वो मनाया, तो बहुत अच्छा गुजरा। कहती हैं कि जी बहुत अच्छा किया आपने अपना पेज बना लिया, मुझे तो हद से ज्यादा खुशी हुई है। थैंक यू सो मच, मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। और एक्चुअली ये पेज ना मैंने बहुत फोर्सफुली बना लिया, मुझे जो है वो जैस्मीन ने कहा कि नहीं भाई आपका जो है वो पेज अब बनना ही बनना है, और उसने कहा कि नहीं अब बहुत हो गया फातिमा, अब तो तुम पेज बनाकर ही रहोगी। तो मैंने कहा चलो भाई, और ये काफी टाइम से बन रहा था नहीं बन रहा था, फिर मैंने कहा चलो भाई अब बना लेते हैं। अब हमारे लिसनर्स भी बहुत कहते हैं कि आपका फेसबुक पेज होना चाहिए, तो भाई बना लिया है हमने, आप उसे फॉलो कर लिया आरजे फातिमा खान के पेज को विच इज ऑन फेसबुक। तो हम भी स्टेटस अपडेट करेंगे तो आप हमारे मैसेज का जवाब 3636 पर भी दे सकते हैं और साथ ही साथ आरजे फातिमा खान के पेज पर भी दे सकते हैं। तो भाई जरा कराची के दर्जे हरारत पर भी नजर डाल लेते हैं। द गुड थिंग इज दैट कि कराची का मौसम इस वक्त काफी बेहतर है। इस वक्त दर्जा हरारत जो है वो 31 है, जबकि महसूस किया जाने वाला दर्जा हरारत जो है वो 33 है। और है मेरे अल्लाह है मेरे पाक परवरदिगार, अभी बस अगस्त में किसी भी एक दिन हमें बारिश का मौका मिल जाए, क्योंकि फिर अगस्त गया तो फिर क्या ही आएगी बारिश वापस भाई। तो बस एक होप है कि शायद शायद शायद बारिश हो जाए। तो उम्मीद पर दुनिया कायम है, हम भी इस उम्मीद को जारी रखेंगे और इंतजार करेंगे कि पता नहीं वो पल कब आएगा जब हो जाएगी शहर कराची में बारिश। कभी कभी कुछ चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैं सोचती हूँ यार पंजाब में कितने मजे हैं, वहां पे कितनी कितनी बारिशें हो जाती हैं और यहां पर हम जो है वो बस इंतजार ही करते रहते हैं कि जी अब होगी तब होगी कब होगी और वो कब नहीं आती है। अच्छा जी, उसी के साथ साथ एक और जरूरी ऐलान है मेरी जानिब से, और वो ऐलान ये है कि तमाम वालिदैन से दरख्वास्त है कि जो जो आपने अपने जिन जिन बच्चों को ये बाजे दिलाए थे खुदारा उनसे छीन कर कहीं जगह पर छुपा दें या फिर बेहतर है आप तोड़ दें, जो भी आपको ठीक लगता है, लेकिन अब वक्त आ चुका है कि वो तमाम बाजे आप लोग अपने बच्चों से छीन लें और छीन कर किसी ऐसी महफूज मुकाम पर पहुंचा दें जहां पर वो बासानी उसे ना छू सकें, क्योंकि बहुत बजा लिया भाई बच्चों ने बाजे, अब वक्त है सख्ती का। तो आप करें अपने बच्चों पर सख्ती और छुपा दें इन बाजों को, जब तक हम चलते हैं ट्रैक की जानिब, आते हैं वापस ट्रैक के बाद।

के जी तो आ चुके हैं वापस। साबिर भट्टी कहते हैं हाउ आर यू मैडम, आलू गोश्त पकाया है। ओके आलू गोश्त तो बड़ा मजे का होता है भाई। कहते हैं प्लीज ये सॉन्ग है। ओके चलें जी, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। ठीक है जी, इसे भी हम शामिल करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, सो डोंट वरी। अच्छा भाई, मैंने कहा जरा आज कौन कौन से दिन मनाए जाते हैं इस पर भी नजर डाल लें। तो आज है नेशनल रिलैक्सेशन डे, यानी कि रिलैक्स करने का दिन। और कभी कभी ना आपको रिलैक्स की बहुत ज्यादा नीड होती है, लेकिन हम काम की वजह से इतने मसरूफ हो जाते हैं या अपनी एक ऑलरेडी बिजी लाइफ की वजह से ना हम ये रिलैक्सेशन जैसे लफ्ज को अपनी जिंदगी से शायद माइनस ही कर देते हैं। लेकिन कभी कभी रिलैक्स एक बहुत अहम रिक्वायरमेंट होता है आपकी जिंदगी की। और अक्सर औकात आपके साथ ऐसा भी होता है कि आप बैठे बैठे कभी सो जाते हैं या आप ऑटोमेटिकली ना एक रिलैक्सेशन मोड पे आ जाते हैं, तो वो कुछ मिनटों का या कुछ घंटों का रिलैक्स जो है ना वो आपको वापस, वो कहते हैं ना कि सर से पैर तक रिफ्रेश कर देता है। और ये बहुत सडनली कभी कभी ऐसा होता है कि जी आप जो है वो ऐसे मोबाइल देख रहे थे या ऐसे लेटे हुए थे और आपकी ना कोई लगभग 30 मिनट की या 20 मिनट की आंख लग गई, और जब आप सो के उठते हैं ना तो आपको लगता है अल्लाह मैं कितना सो लिया या मैं कितना फ्रेश हो गया। ऐसा कभी कभी होता है, लेकिन ये समटाइम्स होने वाली ये चीज ना आपको मेंटली भी एक तो मुझे लगता है कि फ्रेश कर देती है और साथ ही साथ फिजिकली भी, क्योंकि कभी कभी ना थोड़ा रिलैक्स करना बनता है जो कि हम रिलैक्स नहीं करते, लेकिन रिलैक्स करना बहुत जरूरी है। अच्छा आप रिलैक्स होकर क्या काम करना पसंद करते हैं? वैसे तो रिलैक्सेशन में कोई काम नहीं किया जाता क्योंकि आप रिलैक्स कर रहे हैं, आप इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो रिलैक्सेशन मोड पर भी ना कुछ करने की खोज में होते हैं। अच्छा कुछ करने की जहां तक बात है तो भाई कुछ नहीं तो हम एक अदद रिलैक्सेशन मोड अपना ऑन तो कर देते हैं, लेकिन उस मोड के बावजूद भी हमारे साथ क्या चल रहा होता है कि हम उसमें मोबाइल देख रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, शेयरिंग कर रहे हैं, एक ये चीज भी हम लोग कर रहे होते हैं। सो क्या वो भी रिलैक्सेशन है या वो कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा टॉर्चर है? ये तो भाई आप ही की जुबानी हम जानेंगे कि आपको कैसा लगता है रिलैक्स फील कर कि आप किस किस तरह से रिलैक्सेशन मूड अपना ऑन करते हैं, मोबाइल के साथ करते हैं या फिर आराम करना पसंद करते हैं। बहुत सारे लोगों का पसंदीदा मशगला होता है सोना, बहुत लोगों को बहुत अच्छा लगता है। अच्छा ये सोना है स्लीपिंग, सोना नहीं, गोल्ड तो भाई बड़ा महंगा है, उसकी खरीदारी के लिए भी अब तो बहुत दफा सोचना पड़ता है। और यही लोग हम लोग ना अभी रियलाइज कर रहे हैं कि यार जब सोना सस्ता था तब हमने क्यों नहीं ले लिया, अगर ले लेते तो कितना फायदा हो जाता। और हमेशा ऐसी होता है जब महंगाई होती है ना हम अपने उस टाइम को जरूर याद करे होते हैं कि जब सस्ता था तब हमें ले लेना चाहिए था, अब तो इतना महंगा है कि वाकई में। तो ये वो वाली सोने की बात नहीं हो रही, ये स्लीपिंग की बात हो रही है। तो भाई आपका पसंदीदा मशगला क्या है जब आप रिलैक्सेशन मोड अपनी लाइफ का ऑन करते हैं, तो किस तरह आप रिलैक्स करना पसंद करते हैं हमें जरूर बताएं। और इसे बताने के लिए भी आपने अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाना है, KHI लिखना है, स्पेस देना है, अपना मैसेज टाइप कर सेंड कर देना है 3636 पे। साथ ही साथ RJ फातिमा खान की फेसबुक पेज पर भी आप कमेंट कर सकते हैं, वहां भी हमने स्टेटस जो है वो अपडेट कर दिया है, तो वहां मैसेज करें या फिर 3636 पर भेजें और हमें बताएं कि आप अपना रिलैक्सेशन मोड किस तरह ऑन करते हैं। जब तक हम भी चलते हैं एक पीसफुल ट्रैक की जानिब, आते हैं वापस इसके बाद।

0: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें खरीदें और पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
1: आजादी का जश्न अब बाटा के संग। बाटा लाया है जबरदस्त आजादी ऑफर, पूरे स्टॉक पर फ्लैट 20% डिस्काउंट। अपना फेवरेट चूज अब पाएं जबरदस्त बचत के साथ।
2: दिन में अपने पैसों से किसी राह चलते की हेल्प करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ।
3: This program is brought to you by
4: Step School से Foundation Ho Strong. Call now at 0311117837.
5: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत।
6: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे ना लगाएं।
7: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ।
6: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं। सामने वाले पर क्या गुजरी हमें से क्या।
7: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी। अपना BMI चेक करवाएं,
5: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचें, वेट से आगे का सोचें।
8: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
9: Get ready to spice up your lunch hour with the hottest tunes and the coolest vibes. It's the lunchtime special with the one and only Fatima Khan.
10: Join Fatima Khan.
9: The best of music, entertainment, and everything in between from 12 to 2, Monday to Saturday. So grab your lunch, turn up the volume, and let's take your midday break a blast.
10: Midday break a blast.
11: तो भाई साबिर भट्टी कहते हैं कि थैंक यू सो मच, खुश रहो, यू आर वेलकम, और आपने एंजॉय किया ये जानकर अच्छा लगा। और इसी के साथ साथ भाई बात हो रही थी कि आप लोग अपनी जिंदगी में रिलैक्सेशन मोड कब ऑन करते हैं और कैसे करते हैं। हमने कुछ चीजें बताई कि लोग इस तरह जो है वो रिलैक्स करना पसंद करते हैं। तो भाई लुकपल कहती हैं कि मुझे जब रिलैक्स होना होता है तो मैं मोबाइल यूज करती हूं और वो सिर्फ रात में ही होता है। अच्छा, वैसे ये बात है कि अब कुछ ऐसा टाइम हो चुका है कि आपके पास मोबाइल तो वैसे पूरा दिन मौजूद होता है, लेकिन रात को देखने में ना बड़ा मजा आता है क्योंकि आप बड़े रिलैक्स मूड एक्चुअली में ऑन हो जाता है, क्योंकि आप सारे काम वाम कर चुके होते हैं, सारे काम वाम करके खाना वाना खा कर रिलैक्स होकर घर वालों से बातें कर आप लेटने जाते हैं, तो वो एक्चुअली में उसी टाइम आपका जो रिलैक्सेशन मोड है वो ऑन हो जाता है। और उसी में साथ साथ अगर मोबाइल देखा जाए तो भाई वो कहते हैं ना कि जी मजा मजीद दुबाला हो जाता है। लेकिन मेरे साथ तो अब यह मसला हो गया आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम कि अब मैं, क्योंकि मैं बीच में भी नहीं सोती या कुछ, तो अल्लाह रात में मैं इतनी कोशिश करती हूं कि जरा सी देर मोबाइल देख लूं, देखूं तो कि दुनिया में क्या हो रहा है, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं देख पाती और मैं सो जाती हूं रोजाना। ये सोच में रहती हूँ कि अब देखूंगी अब देखूंगी, लेकिन वो ये होता है कि मुझे इतनी सारी नींद आ रही होती है और नींद तो आ जाती है, फिर मुझे अचानक से मेरी आंख इस टेंशन से खुलती है कि कहीं देर तो नहीं हो गई, मेरा अलार्म नहीं बजा, मैं उठ गई या नहीं उठी। और ये जो टेंशन होती है ना ये बड़ी गलत होती है। मैं कहती हूँ इंसान जब सो रहा है ना तो वो बेफिक्र होकर सोए, ये बहुत जरूरी है। और मुझे एवरी डे टेंशन होती है कि पता नहीं मेरा अलार्म बजा है या नहीं बजा है, कहीं बहुत देर तो नहीं हो गई है मुझे उठने में। लेकिन ये भी एक ऐसी सिचुएशन है जो सबके साथ होती है कि अक्सर औकात आप ना बड़ा घबरा के उठते हैं और आप इसलिए उठते हैं डर से कि कहीं लेट तो नहीं हो गए या कहीं टाइम तो नहीं गुजर गया। और जब आप सडनली घड़ी की जानिब देखें या अपना मोबाइल फोन ऑन करके देखें कि नहीं भाई अभी तो 6 बजे हैं 8 बजे, अल्लाह इतनी खुशी होती है ना, वो आपको ऐसा लगता है कि आपको लाइफ में ना एक अदद बोनस मिल गया है कि नहीं अभी आपके उठने में टाइम है, 2 घंटे, 1 घंटा या समटाइम्स वो आधा घंटा भी ना मुझे लगता है कि किसी ब्लेसिंग से कम नहीं होता। जब आप डर के उठते हैं कि पता नहीं कहीं मैं लेट नहीं होगा, और आपको पता चले कि नहीं अभी आपके पास 1-2 घंटे मौजूद हैं, हाय द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ द डे होता है वो, तो है ना, ऐसा तो है ना। ऑलराइट जी, फिर भी अगर आप हमें जरूर बताएं कि आपको रिलैक्स करना किस तरह अच्छा लगता है, अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाएं, केयर चाय लिखें, स्पेस दें, अपना मैसेज टाइप करें और सेंड कर दें 3636 पे। साथ ही साथ आप जो है वो आरजे फातिमा खान की पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी मैंने जो है वो स्टेटस अपडेट कर दिया, तो वहां भी आप हमें इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। साथ ही साथ वक्त तेजी से गुजर रहा है क्योंकि जी वक्त कम है और मुकाबला सख्त है, तो एक और ट्रैक की जानिब हम चलते हैं और बहुत सारे ऑप्शन मेरे पास मौजूद हैं और आई एम वेरी कंफ्यूज कि कौन से ट्रैक को इस वक्त जो है वो शामिल किया जाए। تو چلیں جی حدیقہ کیانی کے اس پیارے سے ٹریک کو شامل کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم واپس آتے ہیں.

0: FM 100's time check. It's 2 p.m.
1: आजादी का जश्न अब बाटा के संग. बाटा लाया है जबरदस्त आजादी ऑफर. पूरे स्टॉक पर फ्लैट 20% डिस्काउंट. अपना फेवरेट चूज अब पाएं जबरदस्त बचत के साथ.
2: लंच टाइम अपनी कलीग्स के साथ बिल स्प्लिट करना, ये है असल आजादी. आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जास कैश ऐप नाउ.
3: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत. सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्रर डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम. बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इनाम की वसूली तक कार्ड को महफूज रखें. इनाम निकलने की सूरत में मुकर्रर डीलर्स, कंपनी के दफातर या करीबी सोना सेंटर से राब्ता करें.
4: दिन में अपने पैसों से किसी राह चलते की हेल्प करना, ये है असल आजादी. आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ.
0: This program is brought to you by
5: Step School से foundation हो strong. Call now at 03111117837.
6: Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.
7: कुदरत का निजाम तवाजन पर कायम है.
8: वसाइल से ज्यादा आबादी के बोझ से तवाजन बिगड़ जाता है.
9: घर के अफराद और आमदन में तवाजन
10: हमारी जिम्मेदारी है. खानदानी मंसूबा बंदी के तरीकों पर अमल करके अपनी जिम्मेदारी पूरी करें.
11: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
0: FM 100 31 साल FM 100 आपकी आवाज. अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान.
12: अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान. पाकिस्तान.

0: trial, it's happening aaj bhi. So keep up. Bata par Jazz Cash se 50% cashback aur Honda Elantra jeetne ka mauka.
1: At shopping of 5,000 rupees
0: only. And you're still here? Kiska intezaar hai? Bhago!
2: जैज कैश के साथ पाओ फिर से एक करोड़ जीतने का शानदार मौका. अब हर महीने अपने जैज कैश अकाउंट में 15,000 रुपए या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करने पर 60 लकी विनर्स को मिलेगा 5 लाख रुपए तक का इनाम और साथ ही साथ मिलेगा एक करोड़ का बम्पर प्राइज. बैलेंस मेंटेन करने पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैज कैश है ना.
3: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्ररा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें. बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनामात.
4: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है. जैज कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस. तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैज कैश है ना.
5: इजी पैसा लाया शानदार ऑफर. अभी सर्विस से नए शूज खरीदें और इजी पैसा QR से पेमेंट करके 25% कैशबैक हासिल करें. ये ऑफर मुल्क भर के तमाम सर्विस स्टोर्स पर दस्तयाब है. आज ही शॉपिंग करें और कैशबैक का फायदा उठाएं. इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.
6: लंच टाइम अपने कलीग्स के साथ बिल स्प्लिट करना, ये है असल आजादी. आपके लिए असल आजादी क्या है? Download the Jazz Cash app now.
7: तमाम बिल्स एक जगह पे हो जाएं तो लाइन में क्यों लगना. अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और पे करें अपने बिजली, गैस, पानी और इंटरनेट के बिल्स बिना किसी स्ट्रेस के. महफूज और फौरी बिल की अदायगी के लिए जैज कैश है ना.
8: दिन में अपने पैसों से किसी राह चलते की हेल्प करना, ये है असल आजादी. आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ.
9: 100 FM.
10: छम छम छम किताबे लेके निकले हम. अम्मी ने कहा ना रुकना तुम, रोज रोज आगे बढ़ते रहे हम.

0: आजादी का जश्न अब बाटा के संग। बाटा लाया है जबरदस्त आजादी ऑफर, पूरे स्टॉक पर फ्लैट 20% डिस्काउंट। अपना फेवरेट चूज अब पाएं जबरदस्त बचत के साथ।
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें खरीदें और पाएं बेशुमार कीमती इनामात।
2: लंच टाइम अपनी कलीग्स के साथ बिल स्प्लिट करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जस्ट कैश ऐप नाउ।
3: This program is brought to you by
4: Step School से foundation हो strong। Call now at 03111117837।
5: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सर दर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात आपकी हिफाजत।
6: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
7: FM 100 Like us on facebook.com/FM247365 FM 247365

0: FM 100's time check. It's 3 p.m. This program was brought to you by
1: Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at 0311-111-7837.
2: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्ररा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इनाम की वसूली तक कार्ड को महफूज रखें। इनाम निकलने की सूरत में मुकर्ररा डीलर्स कंपनी के दफातर या करीबी सोना सेंटर से राब्ता करें।
3: अभी इजी पैसा लोड इन पैकेजेस हब से यू फोन या टेलीनॉर का वीकली पावर ग्रैंड पैकेज सब्सक्राइब करें और आराम से घर बैठे 100 रुपए का डिस्काउंट पाएं। तो देर किस बात की, अमेजिंग डिस्काउंट्स अनलॉक करो विद इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
0: लाइक अस ऑन facebook.com/fm247365 fm247.
4: This is your music.

0: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्रर डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
1: 100 FM।
2: छम छम छम किताबें लेके निकले हम, अम्मी ने कहा ना रुकना तुम, रोज रोज आगे बढ़ते रहे हम।

0: It's 5:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है. शोबे सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम.
2: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग. स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन विच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर. एडमिशंस ओपन. फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111117837.
3: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है.
4: ठीक तो है लेकिन स्पेशल नहीं.
3: मतलब
4: इमेजिन पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर ड्राइवर सीट, एलॉय रिम्स और सनरूफ.
3: स्पेशल तो लग रही है.
4: और प्राइस सिर्फ 64,49,000.
3: अब समझ आया इसे स्पेशल एडिशन क्यों कहते हैं. एक्सपीरियंस द न्यू Hyundai Elantra 1.6 स्पेशल एडिशन नाउ अवेलेबल एट Hyundai डीलरशिप्स नेशन वाइड.
5: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रैच करें और पाएं बेशुमार कीमती इनाम.
6: Did you know what Bata is bringing? 50% cash back aur nayi gaadi sirf school shoes par. Aisi offers ab kahan?
0: This program is brought to you by
7: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
8: And Sir Sabs Nitro Force ko laga aur jeetta ja.
0: FM 100. Like us on Facebook.com/FM247365. FM247365.

0: वाला बैंक।
1: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन विच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर। एडमिशन्स ओपन। फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111117837।
2: Well, it's happening aaj bhi. So keep up. Bata par Jazz Cash se 50% cashback aur Hyundai Elantra jeetne ka mauka.
3: At shopping of 5,000 rupees
2: only. And you're still here? Kiska intezaar hai? Bhago!
4: सर सब नाइट्रोफॉस की बोरी पे लगा 9 हिस्सों का स्टिकर कोड अपने नाम और इलाके के साथ 03003641 पर भेजें या सर सब पाकिस्तान ऐप के जरिए अपनी एंट्री रजिस्टर करवाएं और मौका पाएं उम्र टिकट मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन जैसे ढेरों इनाम जीतने का। एंट्री भेजने के बाद बोरी और स्टिकर संभाल के रखें। मजीद मालूम के लिए सर सब हेल्पलाइन पर कॉल करें। तो सर सब नाइट्रोफॉस को लगा और जीत ताजा।
5: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रुपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीतें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
6: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है।
7: ठीक तो है लेकिन स्पेशल नहीं।
6: मतलब
7: Imagine push start, multiple drive modes, cruise control, power driver seat, alloy rims और sunroof.
6: Special तो लग रही है।
7: और price सिर्फ 64,49,000.
6: अब समझ आया इसे special edition क्यों कहते हैं? Experience the new Hyundai Elantra 1.6 special edition now available at Hyundai dealerships nationwide.
8: इजी पैसा लाया शानदार ऑफर। अभी सर्विस से नए शूज खरीदें और इजी पैसा QR से पेमेंट करके 25% कैशबैक हासिल करें। ये ऑफर मुल्क भर के तमाम सर्विस स्टोर्स पर दस्तयाब है। आज ही शॉपिंग करें और कैशबैक का फायदा उठाएं। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
9: PTCL Flash Fiber Azadi Offer. Lagaye sirf ₹4,999 mein aur paaye free Shock Android TV Box worth ₹15,000. Free 100 Mbps internet speed 6 mahine ke liye. 500 all net minutes aur bahut kuch. To aaj hi naya connection lagaye. Call 1218 ya UPTCL app download karke subscribe kare. Terms and conditions apply. Sharaat zawabit lagu hai.
10: 100 FM. This song is brought to you by EcoStar.

0: जिंदाबाद।
1: दिस सॉन्ग इज ब्रॉट टू यू बाय इक्वेस्टार
2: 100 FM।
3: छम छम छम किताबें लेके निकले हम, अम्मी ने कहा ना रुकना तुम, रोज रोज आगे बढ़ते रहे हम।

0: It's 6:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए गोशा।
2: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है।
3: ठीक तो है लेकिन स्पेशल नहीं।
2: मतलब
3: इमेजिन पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर ड्राइवर सीट, एलॉय रिम्स और सनरूफ।
2: स्पेशल तो लग रही है।
3: और प्राइस सिर्फ 64,49,000।
2: अब समझ आया इसे स्पेशल एडिशन क्यों कहते हैं। एक्सपीरियंस द न्यू Hyundai Elantra 1.6 स्पेशल एडिशन नाउ अवेलेबल एट Hyundai डीलरशिप्स नेशन वाइड।
4: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन विच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर। एडमिशन्स ओपन। फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111117837।
5: लंच टाइम अपनी कलीग्स के साथ बिल स्प्लिट करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जस्ट कैश ऐप नाउ।
6: सोना सेहत कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रैच करें और पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
7: Did you know what Bata is bringing? 50% cashback और नई गाड़ी सिर्फ स्कूल शूज पर। ऐसी ऑफर्स अब कहाँ?
8: दिन में अपने पैसों से किसी राह चलते की हेल्प करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? Download the Jazz Cash app now.
0: This program is brought to you by
9: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
10: And Sir Sabs Nitro Force ko laga aur jeet ta ja.
11: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
12: 365.

0: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है। चैट कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस। तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैस कैश है ना।
1: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन विच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर। एडमिशंस ओपन, फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111178 37।
2: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है।
3: ठीक तो है लेकिन स्पेशल नहीं।
2: मतलब
3: इमेजिन पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर ड्राइवर सीट, एलॉय रिम्स और सनरूफ।
2: स्पेशल तो लग रही है।
3: और प्राइस सिर्फ 64,49,000।
2: अब समझ आया इसे स्पेशल एडिशन क्यों कहते हैं। एक्सपीरियंस द न्यू Hyundai Elantra 1.6 स्पेशल एडिशन नाउ अवेलेबल एट Hyundai डीलरशिप्स नेशन वाइड।
4: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रुपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीतें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
5: आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर, 79 रुपए तक की बचत के साथ। जश्न आजादी मुबारक।
6: जब तमाम बिल्स एक जगह पे हो जाएं तो लाइन में क्यों लगना। अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करें और पे करें अपने बिजली, गैस, पानी और इंटरनेट के बिल्स बिना किसी स्ट्रेस के। महफूज और फौरी बिल की अदायगी के लिए जैस कैश है ना।
7: इजी पैसा लाया शानदार ऑफर, अभी सर्विस से नए शूज खरीदें और इजी पैसा QR से पेमेंट करके 25% कैशबैक हासिल करें। ये ऑफर मुल्क भर के तमाम सर्विस स्टोर्स पर दस्तयाब है। आज ही शॉपिंग करें और कैशबैक का फायदा उठाएं। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
8: Well, it's happening आज भी, so keep up. Bata पर जैस कैश से 50% कैशबैक और Hyundai Elantra जीतने का मौका
9: at shopping of 5,000 rupees
8: only. And you're still here? किसका इंतजार है? भागो!
10: लंच टाइम अपने कलीग्स के साथ बिल स्प्लिट करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैस कैश ऐप नाउ।
11: Hey yo, single again? Ujad gaya raaton ka chain.

घर पे देखने आए हैं दुपट्टा लो सर पे। क्लास का मसला कभी क्लास का मसला कभी पप्पो या खाला या सास का मसला। मेरी उम्र बड़ी है या कमर बड़ी, अगर आपको मसला तो रखिए फासला। रिश्ता पसंद आया नहीं।

0: अपने पैसों से किसी राह चलते की हेल्प करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ।
1: PTCL फ्लैश फाइबर आजादी ऑफर लगाएं सिर्फ ₹4,999 में और पाएं फ्री शॉक एंड्रॉइड टीवी बॉक्स वर्थ ₹15,000, फ्री 100 Mbps इंटरनेट स्पीड 6 महीने के लिए, 500 ऑल नेट मिनट्स और बहुत कुछ। तो आज ही नया कनेक्शन लगाएं। कॉल 1218 या UPTCL ऐप डाउनलोड करके सब्सक्राइब करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, शर्त जवाबित लागू है।
2: 100 FM. This song is brought to you by EcoStar.

0: Assalamualaikum Pakistan.
1: It's 6:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
2: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
3: Step School se foundation ho strong. Step Schools de raha hai modern new age education, which will prepare your child in becoming a future leader. Admissions open. For more details, call now at 0311117837.
4: आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर 79 रुपए तक की बचत के साथ. जश्न आजादी मुबारक.
5: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रुपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं. तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीतें. इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.
6: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है.
7: ठीक तो है लेकिन स्पेशल नहीं.
6: मतलब?
7: Imagine push start, multiple drive modes, cruise control, power driver seat, alloy rims or sunroof.
6: Special to lag rahi hai.
7: Aur price sirf 64,49,000.
6: Aap samajh aaya ise special edition kyun kehte hain? Experience the new Hyundai Elantra 1.6 special edition, now available at Hyundai dealerships nationwide.
8: आजादी का जश्न अब बाटा के संग. बाटा लाया है जबरदस्त आजादी ऑफर. पूरे स्टॉक पर फ्लैट 20% डिस्काउंट. अपना फेवरेट चूज अब पाए जबरदस्त बचत के साथ.
9: दिन में अपने पैसों से किसी राह चलते की हेल्प करना, ये है असल आजादी. आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ.
10: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादे खरीदें और पाएं बेशुमार कीमती इनामात.
11: लंच टाइम अपनी कलीग्स के साथ बिल स्प्लिट करना, ये है असल आजादी. आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ.
12: PTCL Flash Fiber Azadi Offer. Lagaye sirf ₹4,999 mein aur paaye free Shock Android TV Box worth ₹15,000. Free 100 Mbps internet speed 6 mahine ke liye. 500 all net minutes aur bahut kuch. To aaj hi naya connection lagaye. Call 1218 ya UPTCL app download karke subscribe karein. Terms and conditions apply. Sharaat aur zawabit lagu hain.
1: This program is brought to you by
2: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
1: And Sarsabz Nitro Force ko laga aur jeetta ja.
13: 100 FM.
14: Hi friends, I am Mikal Zulfikar. And today I am not speaking to you as a public figure, but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle. But they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs and let's stand together.
1: Ye paigham hukumat e Pakistan ki janib se pesh kiya gaya.
13: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.

0: your very own destination. We are 100% always with you.
1: FM 100.
2: I'm gonna follow where you lead.
0: So, this connection is forever. It's time check. Around the clock.
3: FM 100's time check. It's 7 p.m. This program was brought to you by
4: Phoenix Laga aur Bhul Ja, Phoenix Laga aur Bhul Ja,
3: and Sarsabz Nitro Force ko laga aur jeeta ja.
5: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉप सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन नज़ा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शॉप सिंगल रेमेडीज, भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
6: अभी इजी पैसा लोड इन पैकेजेस हब से यू फोन या टेलीनॉर का वीकली पावर ग्रैंड पैकेज सब्सक्राइब करें और आराम से घर बैठे 100 रुपए का डिस्काउंट पाएं. तो देर किस बात की, अमेजिंग डिस्काउंट्स अनलॉक करो विद इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.
7: आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर 79 रुपए तक की बचत के साथ. जश्न आजादी मुबारक.
8: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रुपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं. तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीतें. इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.
9: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है. चैट कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस. तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए चैट कैश है ना.
10: इजी पैसा लाया शानदार ऑफर, अभी सर्विस से नए शूज खरीदें और इजी पैसा क्यूआर से पेमेंट करके 25% कैशबैक हासिल करें. ये ऑफर मुल्क भर के तमाम सर्विस स्टोर्स पर दस्तयाब है. आज ही शॉपिंग करें और कैशबैक का फायदा उठाएं. इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.
11: इजी पैसा लाया शानदार ऑफर, अभी सर्विस से नए शूज खरीदें और इजी पैसा क्यूआर से पेमेंट करके 25% कैशबैक हासिल करें. ये ऑफर मुल्क भर के तमाम सर्विस स्टोर्स पर दस्तयाब है. आज ही शॉपिंग करें और कैशबैक का फायदा उठाएं. इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.
3: आजादी का जश्न अब बाटा के संग. बाटा लाया है जबरदस्त आजादी ऑफर, पूरे स्टॉक पर फ्लैट 20% डिस्काउंट. अपना फेवरेट चूज अब पाएं जबरदस्त बचत के साथ.
12: रात में दोस्तों के साथ पैडल मैच के लिए ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करना, ये है असल आजादी. आपके लिए असल आजादी क्या है, डाउनलोड जैस कैश ऐप नाउ.
13: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्रर डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम. बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इनाम की वसूली तक कार्ड को महफूज रखें. इनाम निकलने की सूरत में मुकर्रर डीलर्स, कंपनी के दफातर या करीबी सोना सेंटर से राब्ता करें.
14: अपनी सैलरी से पूरी फैमिली के लिए मरी में स्टेकेशन बुक करना, ये है असल आजादी. आपके लिए असल आजादी क्या है, डाउनलोड द जैस कैश ऐप नाउ.
6: PTCL फ्लैश फाइबर आजादी ऑफर, लगाएं सिर्फ ₹4,999 में और पाएं फ्री शॉक एंड्रॉइड टीवी बॉक्स वर्थ ₹15,000, फ्री 100 Mbps इंटरनेट स्पीड 6 महीने के लिए, 500 ऑल नेट मिनट्स और बहुत कुछ. तो आज ही नया कनेक्शन लगाएं. कॉल 1218 या UPTCL ऐप डाउनलोड करके सब्सक्राइब करें. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, शराइत सवाबित लागू है.
15: कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मोहतात रहें. अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें. हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है. یاد رکھیں دہشت گردوں کی مالی معاونت بھی دہشت گردی ہے. حکومت پاکستان.
16: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
17: ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایف ایم 24/7/365.
18: This is your music.

0: असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जास कैश ऐप नाउ।
1: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदान जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात है और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो रास निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: facebook.com/fm247365 fm247365
4: bumper to bumper only on fm 100.

0: पैसे वाला बैंक।
1: जैज कैश के साथ पाओ फिर से 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अब हर महीने अपने जैज कैश अकाउंट में 15,000 रुपए या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करने पर 60 लकी विनर्स को मिलेगा 5,00,000 रुपए तक का इनाम और साथ ही साथ मिलेगा 1 करोड़ का बम्पर प्राइज। बैलेंस मेंटेन करने पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैज कैश है ना।
2: आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर 79 रुपए तक की बचत के साथ। जश्ने आजादी मुबारक।
1: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है। जैज कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस। तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैज कैश है ना।
3: Well, it's happening आज भी, so keep up. Bata par Jazz Cash se 50% cashback aur Hyundai Elantra jeetne ka mauka.
4: At shopping of 5,000 rupees
3: only. And you're still here? Kiska intezaar hai?
4: Bhago!
5: जब तमाम बिल्स एक जगह पे हो जाएं तो लाइन में क्यों लगना। अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और पे करें अपने बिजली, गैस, पानी और इंटरनेट के बिल्स बिना किसी स्ट्रेस के। महफूज और फौरी बिल की अदायगी के लिए जैज कैश है ना।
6: इजी पैसा लाया शानदार ऑफर। अभी सर्विस से नए शूज खरीदें और इजी पैसा QR से पेमेंट करके 25% कैशबैक हासिल करें। ये ऑफर मुल्क भर के तमाम सर्विस स्टोर्स पर दस्तयाब है। आज ही शॉपिंग करें और कैशबैक का फायदा उठाएं। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
7: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्रा डीलर या सोना सेंटर से खरीदें। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनामात।
8: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रुपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीतें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
9: रात में दोस्तों के साथ पैडल मैच के लिए ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है, डाउनलोड जैज कैश ऐप नाउ।
10: हे यो, सिंगल अगेन, उजड़ गया रातों के चैन। यू डिजर्व बेटर के छिड़ गई अगेन। नो कंपैटिबिलिटी या लगे प्लान्स, फिर से वाली एंटी को पैसों से कर्ज है। शादी कब कर रहे हैं क्या पूछना फर्ज है, तक चलेगी ये चौपाड़ी घर पे। देखने आए हैं दुपट्टा लो सर पे। क्लास का मसला कभी, क्लास का मसला कभी, पप्पो या खाला या सास का मसला। मेरी उम्र बड़ी है या कमर बड़ी, अगर आपको मसला तो रखिए फासला। रिश्ता पसंद आया नहीं?

0: अपनी सैलरी से पूरी फैमिली के लिए मरी में स्टेकेशन बुक करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जास कैश ऐप नाउ।
1: PTCL Flash Fiber Azadi Offer. Lagaye sirf ₹4,999 mein aur paaye free Shock Android TV Box worth ₹15,000. Free 100 Mbps internet speed 6 mahine ke liye. 500 AllNet minutes aur bahut kuch. To aaj hi naya connection lagaye. Call 1218 ya UPTCL app download karke subscribe karein. Terms and conditions apply. Sharaat usawabit lagu hain.
2: 100 FM. This song is brought to you by EcoStar.
3: Suno,

0: It's 7:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga
1: aur bhul ja. आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर 79 रुपए तक की बचत के साथ। जश्न आजादी मुबारक।
2: आजादी का जश्न अब बाटा के संग। बाटा लाया है जबरदस्त आजादी ऑफर, पूरे स्टॉक पर फ्लैट 20% डिस्काउंट। अपना फेवरेट चूज अब पाएं जबरदस्त बचत के साथ।
3: इजी पैसा लाया शानदार ऑफर, अभी सर्विस से नए शूज खरीदें और इजी पैसा QR से पेमेंट करके 25% कैशबैक हासिल करें। ये ऑफर मुल्क भर के तमाम सर्विस स्टोर्स पर दस्तयाब है, आज ही शॉपिंग करें और कैशबैक का फायदा उठाएं। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
4: रात में दोस्तों के साथ पैडल मैच के लिए ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज़ कैश ऐप नाउ।
5: ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो जीतना चाहते हैं? बस अपने इजी पैसा अकाउंट में 15,000 रुपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट करें, बैलेंस 20 दिन तक मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में 4 सुजुकी ऑल्टो या 50,000 के 100 कैश प्राइजेस जीतने का मौका पाएं। तो इंतजार किस बात का, अभी डिपॉजिट करें और जीतें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
6: सोना सेहत कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें खरीदें और पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
2: आजादी का जश्न अब बाटा के संग। बाटा लाया है जबरदस्त आजादी ऑफर, पूरे स्टॉक पर फ्लैट 20% डिस्काउंट। अपना फेवरेट चूज अब पाएं जबरदस्त बचत के साथ।
7: PTCL फ्लैश फाइबर आजादी ऑफर, लगाएं सिर्फ ₹4,999 में और पाएं फ्री शॉक एंड्रॉइड टीवी बॉक्स वर्थ ₹15,000, फ्री 100 Mbps इंटरनेट स्पीड 6 महीने के लिए, 500 ऑल नेट मिनट्स और बहुत कुछ। तो आज ही नया कनेक्शन लगाएं। कॉल 1218 या UPTCL ऐप डाउनलोड करके सब्सक्राइब करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, शराइत सवाबित लागू है।
8: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियां पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं तो बराहे करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
9: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। बच्चों का ऑनलाइन तहफ्फुज़ आपकी जिम्मेदारी है। अपने बच्चों को ऑनलाइन राब्तों का महफूज तरीका इस्तेमाल सिखाएं। इंटरनेट के जरिए खेलों, तफरी और तालीमी सरगर्मियों में शामिल होने के फवायद जरूर हैं, लेकिन इसमें नामुनासिब मवाद, साइबर बुलिंग और दीगर ऑनलाइन नुकसान जैसे मुमकिन खतरात भी मौजूद हैं। वालिदैन और असातिज़ा की जानिब से बच्चों की निगरानी और रहनुमाई न होने की सूरत में बच्चे बासानी मनफी सरगर्मियों का शिकार हो सकते हैं। वालिदैन को अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों के हवाले से आगाह और होशियार रहने की जरूरत है। बच्चों को नुकसानदेह मवाद जैसे नफरत अंगेज तकरीर, गुस्ताखाना और फहाश मवाद वगैरह अपलोड और शेयर करने के कानूनी नतायज के हवाले से भी शऊर और आगाही इंतहाई अहमियत की हामिल है। पीटीए की वेबसाइट पर पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर की एक फहरिस्त दस्तियाब है ताकि वालदैन अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों की निगरानी करते हुए उन्हें ऑनलाइन नुकसान से महफूज रखें। www.pta.gov.pk। मुफाद आमा के लिए ये पैगाम FM 100 और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
10: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है। जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सरदर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
9: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
11: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत।
12: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे ना लगाए।
11: मुझे पता है कि मेरा वजन ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं वॉक नहीं करता।
13: मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ।
14: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं। सामने वाले पर क्या गुजरी हम इससे क्या।
11: मैं ओबेसिटी का शिकार हूँ, सिर्फ वॉक से ही कम हूँ।
13: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी।
14: सिर्फ बातें बनाने से हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते।
13: अभी इसी वक्त अपना BMI चेक करवाएं,
11: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचें
14: और इस वजन की असल हकीकत को समझें।
11: आइए वेट से आगे का सोचें।
9: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
15: ईमेल हर अदारे के लिए एक इंतहाई अहम जराए इब्लाग है, लेकिन सिर्फ एक गलत क्लिक पूरे नेटवर्क को खतरे में डाल सकता है। साइबर मुजरिमों की जानिब से हुकूमती और निजी शोबे के मुलाजमीन को मुसलसल फिशिंग ईमेल्स भेजे जा रहे हैं। इनका क्या मकसद है? आपकी लॉगिन तफसीलात चोरी करना, सिस्टम्स को रैंसम वेयर से मुतासिर करना या गैर मजाज रसाई। महफूज रहने के लिए हमेशा ये बेहतरीन तरीके अपनाएं। हमेशा भेजने वाले की शनाख्त चेक करें, खसूसन एड्रेस। हमेशा अटैचमेंट की फाइल एक्सटेंशन चेक करें। PTA.txt महफूज है, लेकिन PTA.txt.exe नुकसानदेह साबित हो सकती है। अटैचमेंट खोलने से पहले जरूर स्कैन करें। ईमेल इस्तेमाल करने के बाद हमेशा लॉग आउट या साइन आउट करें। इन खतरनाक आदतों से हमेशा बचें। सरकारी ईमेल को जाती या गैर सरकारी कामों के लिए इस्तेमाल न करें। किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले असल URL जरूर चेक करें। क्लिक करने से पहले एक बार जरूर देखें। अपना ईमेल पासवर्ड किसी के साथ हरगिज शेयर न करें। पासवर्ड, OTP या हसास मालूमात ईमेल के जरिए कभी भी न भेजें। हैकर्स अक्सर फौरी कार्रवाई, धमकी, लालच या झूठे वार्निंग साइंस जरूर देते हैं, ताकि आप घबराकर फौरन क्लिक कर दें। अगर कोई ईमेल बहुत ज्यादा जरूरी, बहुत ज्यादा पुरकशिश और गैर मामूली तौर पर मशकूक लगे तो एक बार जरूर रुक जाएं और इसकी तस्दीक करें। फिशिंग ईमेल से कैसे बचें? अपने आप को और अपने अदारे को महफूज रखने के लिए धमकी आमेज या जज्बाती जुबान वाली ईमेल से मुहतात रहें। नामालूम या शॉर्ट लिंक्स पर हरगिज क्लिक ना करें। भेजने वाले का मुकम्मल ईमेल एड्रेस जरूर चेक करें। अटैचमेंट से खास तौर पर मुहतात रहें, खुसूसन exe.bat.vbs.msi और दीगर एग्जीक्यूटिवल फाइल से लोगो और ग्राफिक्स आसानी से जाली बनाए जा सकते हैं। इन पर अंधा एतमाद ना करें। किसी भी मशकूक ईमेल की फौरन अपने अदारे की IT टीम को इतला करें। आपकी होशियारी ही पहली दिफाई लाइन है। होशियार रहें, महफूज रहें। ये पैगाम पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम, PTA।
16: ये मुफाद आमा का पैगाम आप तक पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है।
17: FM 24/7/365

0: FM 100's time check. It's 8 p.m.
1: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है। जैज कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस। तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैज कैश है ना।
2: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है।
3: ठीक तो है लेकिन स्पेशल नहीं।
2: मतलब
3: इमेजिन पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर ड्राइवर सीट, एलॉय रिम्स और सनरूफ।
2: स्पेशल तो लग रही है।
3: और प्राइस सिर्फ 64,49,000।
2: अब समझ आया इसे स्पेशल एडिशन क्यों कहते हैं। Experience the new Hyundai Elantra 1.6 Special Edition. Now available at Hyundai dealerships nationwide.
4: आजादी का जश्न अब बाटा के संग। बाटा लाया है जबरदस्त आजादी ऑफर, पूरे स्टॉक पर फ्लैट 20% डिस्काउंट। अपना फेवरेट चूज अब पाएं जबरदस्त बचत के साथ।
5: आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर, 79 रुपए तक की बचत के साथ। जश्न आजादी मुबारक।
6: रात में दोस्तों के साथ पैडल मैच के लिए ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है, डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ।
7: Did you know what Bata is bringing? 50% cashback aur nayi gaadi sirf school shoes par. Aisi offers ab kahan?
8: अपनी सैलरी से पूरी फैमिली के लिए मरी में स्टेकेशन बुक करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ।
9: PDCL फ्लैश फाइबर आजादी ऑफर, लगाएं सिर्फ ₹4,999 में और पाएं फ्री शॉक एंड्रॉइड टीवी बॉक्स वर्थ ₹15,000, फ्री 100 Mbps इंटरनेट स्पीड 6 महीने के लिए, 500 ऑल नेट मिनट्स और बहुत कुछ। तो आज ही नया कनेक्शन लगाएं। कॉल 1218 या UPDCL ऐप डाउनलोड करके सब्सक्राइब करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, शराइत जवाबित लागू है।
10: 100 FM. This song is brought to you by EcoStar.

0: जिंदाबाद। दिस सॉन्ग इज ब्रॉट टू यू बाय इको स्टार। FM 100 Like us on facebook.com/FM247365 FM247365 FM 100 31 साल FM 100 आपकी आवाज। अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान।
1: अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान। पाकिस्तान
0: Bumper to bumper, only on FM 100. 100.

0: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है।
1: ठीक तो है लेकिन स्पेशल नहीं।
0: मतलब
1: इमेजिन पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर ड्राइवर सीट, एलॉय रिम्स और सनरूफ।
0: स्पेशल तो लग रही है।
1: और प्राइस सिर्फ 64,49,000।
0: अब समझ आया इसे स्पेशल एडिशन क्यों कहते हैं। Experience the new Hyundai Elantra 1.6 Special Edition. Now available at Hyundai dealerships nationwide.
2: रात में दोस्तों के साथ पैडल मैच के लिए ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ।
3: Did you know what Bata is bringing? 50% cashback और नई गाड़ी सिर्फ स्कूल शूज पर। ऐसी ऑफर्स अब कहाँ?
4: मंशियात, एक लम्हे की गलती पूरी जिंदगी की तबाही। आइस, हेरोइन, चर्स या किसी भी किस्म की मंशियात, ये वक्ती खुशी नहीं मुस्तकिल अजियत है। ये जिस्म को कमजोर करती हैं, जहन को मफलूज करती हैं और ख्वाबों को तोड़ देती हैं। एक आदत एक खानदान की खुशियां छीन लेती है। इंसदादे मंशियात फोर्स का पैगाम, मंशियात और गैर कानूनी स्मगलिंग के खिलाफ हमारा अज़्म मजबूत है। आइए अहद करें, अपने नौजवानों को बचाएं, अपने मुस्तकबिल को महफूज बनाएं। 26 जून आलमी दिन बराए इंसदादे मंशियात।

0: It's 8:30 p.m. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
1: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है। जैज कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस। तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैज कैश है ना।
2: अपनी सैलरी से पूरी फैमिली के लिए मरी में स्टेकेशन बुक करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ।
3: आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर, 79 रुपए तक की बचत के साथ। जश्न आजादी मुबारक।
4: रात में दोस्तों के साथ पैडल मैच के लिए ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ।
5: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है।
6: ठीक तो है लेकिन स्पेशल नहीं।
5: मतलब?
6: इमेजिन पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर ड्राइवर सीट, एलॉय रिम्स और सनरूफ।
5: स्पेशल तो लग रही है।
6: और प्राइस सिर्फ 64,49,000।
5: अब समझ आया इसे स्पेशल एडिशन क्यों कहते हैं। एक्सपीरियंस द न्यू Hyundai Elantra 1.6 स्पेशल एडिशन, नाउ अवेलेबल एट Hyundai डीलरशिप्स नेशन वाइड।
7: It's happening आज भी, so keep up। Bata पर Jazz Cash से 50% cash back और Hyundai Elantra जीतने का मौका।
8: At shopping of 5,000 rupees only,
7: and you're still here? किसका इंतजार है?
8: भागो!
9: जैज कैश के साथ पाओ फिर से 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अब हर महीने अपने जैज कैश अकाउंट में 15,000 रुपए या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करने पर 60 लकी विनर्स को मिलेगा 5,00,000 रुपए तक का इनाम, और साथ ही साथ मिलेगा 1 करोड़ का बम्पर प्राइज। बैलेंस मेंटेन करने पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैज कैश है ना।
10: PDCL Flash Fiber आजादी ऑफर, लगाएं सिर्फ ₹4,999 में और पाएं फ्री शॉक एंड्रॉइड टीवी बॉक्स वर्थ ₹15,000, फ्री 100 Mbps इंटरनेट स्पीड 6 महीने के लिए, 500 ऑल नेट मिनट्स और बहुत कुछ। तो आज ही नया कनेक्शन लगाएं। कॉल 1218 या UPDCL ऐप डाउनलोड करके सब्सक्राइब करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, शरायत जवाबित लागू है।
11: 100 FM. This song is brought to you by EcoStar.

0: on.
1: FM 100's time check. It's 9 p.m.
2: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है। जैज कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस। तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैज कैश है ना।
3: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है।
4: ठीक तो है लेकिन स्पेशल नहीं।
3: मतलब
4: इमेजिन पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर ड्राइवर सीट, एलॉय रिम्स और सनरूफ।
3: स्पेशल तो लग रही है।
4: और प्राइस सिर्फ 64,49,000।
3: अब समझ आया इसे स्पेशल एडिशन क्यों कहते हैं। एक्सपीरियंस द न्यू Hyundai Elantra 1.6 स्पेशल एडिशन नाउ अवेलेबल एट Hyundai डीलरशिप्स नेशन वाइड।
5: रात में दोस्तों के साथ पैडल मैच के लिए ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है, डाउनलोड जैज कैश ऐप नाउ।
6: आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर, 79 रुपए तक की बचत के साथ। जश्न आजादी मुबारक।
7: अपनी सैलरी से पूरी फैमिली के लिए मरी में स्टेकेशन बुक करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है, डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ।
8: PTCL फ्लैश फाइबर आजादी ऑफर, लगाएं सिर्फ ₹4,999 में और पाएं फ्री शॉक एंड्रॉइड टीवी बॉक्स वर्थ ₹15,000, फ्री 100 Mbps इंटरनेट स्पीड 6 महीने के लिए, 500 ऑल नेट मिनट्स और बहुत कुछ। तो आज ही नया कनेक्शन लगाएं। कॉल 1218 या UPTCL ऐप डाउनलोड करके सब्सक्राइब करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, शराइत सवाबित लागू हैं।
9: बैन अलावा सफर पर रवाना होने वाले मुतवज्जो हों, ऐसी ऑनलाइन ऐप्स और प्लेटफॉर्म से इज्तनाब करें जो पैसों की इवज किसी नामालूम शख्स का सामान आपके अपने सामान के साथ ले जाने के लिए कर। यह आसान कमाई का तरीका तो नजर आता है लेकिन हकीकत में खतरनाक जाल है। मंशियात फरोश इन्हीं तरीकों को इस्तेमाल करके मंशियात स्मगल कर रहे हैं। याद रखें, अगर आपके सामान से मंशियात बरामद हुई तो कानूनन इस जुर्म के जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। खबरदार, किसी अजनबी का सामान दौरान सफर अपने साथ ले जाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है।
10: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
11: कुदरत का निजाम तवाजन पर कायम है, वसाइल से ज्यादा आबादी के बोझ से तवाजन बिगड़ जाता है। घर के अफराद और आमदन में तवाजन
12: हमारी जिम्मेदारी है।
13: खानदानी मंसूबा बंदी के तरीकों पर अमल करके अपनी जिम्मेदारी पूरी करें।
10: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
1: FM 100, like us on facebook.com/FM247365
14: FM247365.
15: Let's
16: 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
17: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: रात में दोस्तों के साथ पैडल मैच के लिए ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज़ कैश ऐप नाउ।
1: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है।
2: ठीक तो है, लेकिन स्पेशल नहीं।
1: मतलब?
2: इमेजिन पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर ड्राइवर सीट, एलॉय रिम्स और सनरूफ।
1: स्पेशल तो लग रही है।
2: और प्राइस सिर्फ 64,49,000।
1: अब समझ आया इसे स्पेशल एडिशन क्यों कहते हैं। एक्सपीरियंस द न्यू Hyundai Elantra 1.6 स्पेशल एडिशन, नाउ अवेलेबल एट Hyundai डीलरशिप्स नेशन वाइड।
3: PTCL फ्लैश फाइबर आजादी ऑफर, लगाएं सिर्फ ₹4,999 में और पाएं फ्री शॉक एंड्रॉइड टीवी बॉक्स वर्थ ₹15,000, फ्री 100 Mbps इंटरनेट स्पीड 6 महीने के लिए, 500 ऑल नेट मिनट्स और बहुत कुछ। तो आज ही नया कनेक्शन लगाएं। कॉल 1218 या UPTCL ऐप डाउनलोड करके सब्सक्राइब करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, शराइत सवाबित लागू है।
4: एक लड़की जब पढ़ेगी तो अपने पैरों पर खड़ी होगी, एक लड़की जब पढ़ेगी तो खुद मुख्तार बनेगी, एक समझदार माँ बनेगी, सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि सारे घराने की जिंदगी बदलेगी, आने वाली नस्लें संवारेगी। एक लड़की जब पढ़ेगी तो मुल्क को मजबूत बनाएगी। पाकिस्तान का आईन और कानून हर लड़की और लड़के को मुफ्त तालीम का हक फराहम करता है। लड़की को पढ़ाएंगे तभी तो आगे जाएंगे। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।
5: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
6: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदान जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात।

0: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है। जैज कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस। तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैज कैश है ना।
1: जब तमाम बिल्स एक जगह पे हो जाएं तो लाइन में क्यों लगना। अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और पे करें अपने बिजली, गैस, पानी और इंटरनेट के बिल्स बिना किसी स्ट्रेस के। महफूज और फौरी बिल की अदायगी के लिए जैज कैश है ना।
2: अपनी सैलरी से पूरी फैमिली के लिए मरी में स्टेकेशन बुक करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जैज कैश ऐप नाउ।
3: आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर, 79 रुपए तक की बचत के साथ। जश्न आजादी मुबारक।
4: रात में दोस्तों के साथ पैडल मैच के लिए ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड जैज कैश ऐप नाउ।
5: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है।
6: ठीक तो है लेकिन स्पेशल नहीं।
5: मतलब?
6: इमेजिन पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर ड्राइवर सीट, एलॉय रिम्स और सनरूफ।
5: स्पेशल तो लग रही है।
6: और प्राइस सिर्फ 64,49,000।
5: अब समझ आया इसे स्पेशल एडिशन क्यों कहते हैं। एक्सपीरियंस द न्यू Hyundai Elantra 1.6 स्पेशल एडिशन, नाउ अवेलेबल एट Hyundai डीलरशिप्स नेशन वाइड।
7: जैज कैश के साथ पाओ फिर से 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अब हर महीने अपने जैज कैश अकाउंट में 15,000 रुपए या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करने पर 60 लकी विनर्स को मिलेगा 5 लाख रुपए तक का इनाम, और साथ ही साथ मिलेगा 1 करोड़ का बम्पर प्राइज। बैलेंस मेंटेन करने पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैज कैश है ना।
8: PDCL फ्लैश फाइबर आजादी ऑफर, लगाएं सिर्फ ₹4,999 में और पाएं फ्री शॉक एंड्रॉइड टीवी बॉक्स वर्थ ₹15,000, फ्री 100 Mbps इंटरनेट स्पीड 6 महीने के लिए, 500 ऑलनेट मिनट्स और बहुत कुछ। तो आज ही नया कनेक्शन लगाएं। कॉल 1218 या UPDCL ऐप डाउनलोड करके सब्सक्राइब करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, शराइत सवाबित लागू है।
9: 100 FM। This song is brought to you by EcoStar.
10: सुनो

0: It's 9:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix
1: laga aur bhul ja. अपनी सैलरी से पूरी फैमिली के लिए मरी में स्टेकेशन बुक करना, ये है असल आजादी। आपके लिए असल आजादी क्या है? डाउनलोड द जास कैश ऐप नाउ।
2: आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर 79 रुपए तक की बचत के साथ। जश्न आजादी मुबारक।
3: हमारी पुरानी कार तो बिल्कुल ठीक चल रही है।
4: ठीक तो है लेकिन स्पेशल नहीं।
3: मतलब?
4: इमेजिन पुश स्टार्ट, मल्टीपल ड्राइव मोड्स, क्रूज कंट्रोल, पावर ड्राइवर सीट, एलॉय रिम्स और सनरूफ।
3: स्पेशल तो लग रही है।
4: और प्राइस सिर्फ 64,49,000।
3: अब समझ आया इसे स्पेशल एडिशन क्यों कहते हैं। Experience the new Hyundai Elantra 1.6 Special Edition. Now available at Hyundai dealerships nationwide.
5: आजादी का जश्न अब बाटा के संग। बाटा लाया है जबरदस्त आजादी ऑफर। पूरे स्टॉक पर फ्लैट 20% डिस्काउंट। अपना फेवरेट चूज अब पाएं जबरदस्त बचत के साथ।
6: PDCL Flash Fiber Azadi Offer. Lagaye sirf ₹4,999 mein. Aur paaye free Shock Android TV Box worth ₹15,000. Free 100 Mbps internet speed 6 mahine ke liye. 500 all net minutes aur bahut kuch. To aaj hi naya connection lagaye. Call 1218 ya UPDCL app download karke subscribe karein. Terms and conditions apply. Sharaat sababit lagu hain.
7: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशतगर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियां पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
8: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
9: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सरदर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें। गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें। लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहने, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
8: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
10: क्या आप जानते हैं कि आपका मोबाइल बैलेंस गैर इरादी तौर पर भी खत्म हो सकता है? ये अक्सर इस वक्त होता है जब आपका डेटा पैक खत्म हो जाता है लेकिन इंटरनेट पे एज यू गो रेट्स पर चलता रहता है, जिससे बैलेंस तेजी से कम हो सकता है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से सार्फिन को आगाह किया जाता है कि ऐसे गैर जरूरी चार्जेस से मुहतात रहें। मोबाइल फोन ऑपरेटरों की जानिब से इस मसले के हल के लिए एक मुफीद और मुफ्त सर्विस मुतारिफ कराई गई है। इस सर्विस के जरिए आपका डेटा पैक खत्म होते ही इंटरनेट का इस्तेमाल खुदकार तौर पर बंद हो जाएगा ताकि आपका कीमती बैलेंस महफूज रहे। सर्विस कॉल करने के लिए दर्ज सेल कोड्स डायल करें। جیز صارفین کے لیے *275#، زونگ صارفین کے لیے *4004#، یو فون صارفین کے لیے *6611#، اور ٹیلی نور صارفین کے لیے *342#۔ اپنا بیلنس محفوظ رکھیں اور غیر ضروری چارجز سے بچیں۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم پیٹیے۔
11: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔
10: ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے تمام موبائل فون صارفین کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کے کمپیوٹرائز قومی شناختی کارڈ فعال ہونے چاہیے۔ یاد رکھیں، اگر آپ کے زیر استعمال سم کے ساتھ منسلک شناختی کارڈ منسوخ کر دیا گیا ہے، یا اس کی میعاد ختم ہو گئی ہے، یا شناختی کارڈ کا حامل فرد وفات پا گیا ہے، تو آپ کی موبائل فون سروس معطل کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا کسی بھی زحمت سے بچنے کے لیے موبائل فون صارفین کو چاہیے کہ جن شناختی کارڈ کی میعاد ختم ہو چکی ہے ان کی فوراً تجدید کروائیں۔ شناختی کارڈ کی منسوخی سے متعلق کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے ناطرہ سے رجوع کریں، اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ سم کسی وفات شدہ فرد کے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ نہ ہو۔ اگر آپ کی سم کسی وفات شدہ شخص کے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ ہے، تو قانونی وارث متعلقہ کمپنی کے سروس سینٹر مجاز فرنچائزز پر جا کر ضروری دستاویزات جمع کروا کر سم کی ملکیت اپنے نام کروا سکتے ہیں۔ شناختی کارڈ کی بر وقت تجدید موبائل فون صارفین کے تسلسل کو یقینی بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ پی ٹی اے آپ کی شناخت کے تحفظ اور صارفین کو محفوظ ٹیلی کام سروسز کی فراہمی کے لیے پرعزم ہے۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم پی ٹی اے۔
12: ایف ایم 100، لائک اس آن facebook.com/FM247365

0: FM 100's time check. It's 10 p.m.
1: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है। चैट कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस। तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैस कैश है ना।
2: आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर 79 रुपए तक की बचत के साथ। जश्न आजादी मुबारक।
3: Did you know what Bata is bringing? 50% cashback और नई गाड़ी सिर्फ स्कूल शूज पर। ऐसी ऑफर्स अब कहाँ?
4: BTCL Flash Fiber Azadi Offer. Lagaye sirf ₹4,999 mein aur paaye free Shock Android TV box worth ₹15,000, free 100 Mbps internet speed 6 mahine ke liye, 500 all net minutes aur bahut kuch. To aaj hi naya connection lagaye. Call 1218 ya UPTCL app download karke subscribe kare. Terms and conditions apply. Sharaat to sawabit lagu hain.
5: 100 FM. This song is brought to you by EcoStar.

0: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है। चैट कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस। तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैस कैश है ना।
1: आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर, 79 रुपए तक की बचत के साथ। जश्न आजादी मुबारक।
0: जैस कैश के साथ पाओ फिर से 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अब हर महीने अपने जैस कैश अकाउंट में 15,000 रुपए या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करने पर 60 लकी विनर्स को मिलेगा 5,00,000 रुपए तक का इनाम और साथ ही साथ मिलेगा 1 करोड़ का बम्पर प्राइज। बैलेंस मेंटेन करने पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैस कैश है ना।
2: जब तमाम बिल्स एक जगह पे हो जाएं तो लाइन में क्यों लगना। अभी जैस कैश ऐप डाउनलोड करें और पे करें अपने बिजली, गैस, पानी और इंटरनेट के बिल्स बिना किसी स्ट्रेस के। महफूज और फौरी बिल की अदायगी के लिए जैस कैश है ना।
3: PTCL फ्लैश फाइबर आजादी ऑफर, लगाएं सिर्फ ₹4,999 में और पाएं फ्री शॉक एंड्रॉइड टीवी बॉक्स वर्थ ₹15,000, फ्री 100 Mbps इंटरनेट स्पीड 6 महीने के लिए, 500 ऑल नेट मिनट्स और बहुत कुछ। तो आज ही नया कनेक्शन लगाएं। कॉल 1218 या UPTCL ऐप डाउनलोड करके सब्सक्राइब करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, शर्तें जवाबित लागू हैं।
4: 100 FM. This song is brought to you by EcoStar.
5: Suno,

0: आजादी के इन रंगों और खुशबुओं से बनी हमारी इस पहचान को मनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल लाया आजादी ऑफर 79 रुपए तक की बचत के साथ। जश्न आजादी मुबारक।
1: PDCL फ्लैश फाइबर आजादी ऑफर लगाएं सिर्फ रुपीज 4,999 में और पाए फ्री शॉक एंड्रॉइड टीवी बॉक्स वर्थ रुपीज 15,000, फ्री 100 Mbps इंटरनेट स्पीड 6 महीने के लिए, 500 ऑल नेट मिनट्स और बहुत कुछ। तो आज ही नया कनेक्शन लगाएं। कॉल 1218 या UPDCL ऐप डाउनलोड करके सब्सक्राइब करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, शराइत जवाबित लागू है।
2: पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कोर्ट इसका नौजवान तबका है। पाकिस्तान की 61% आबादी 18 से 35 साल की उम्र के अफराद पर मुश्तमिल है, जो एक मुनफरिद आबादियाती सरमाया है। नौजवान हमारी मईशत की धड़कन और हमारे मुस्तकबिल के मेहमान हैं। अहम उनके खिलाफ एक खामोश जंग जारी है और वो है मुनशियात का बेहरेज। मुनशियात खरोश माफिया अच्छी तरह से जानती है कि कहां वार है। हमारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियां उनका हदफ हैं, जहां वो नौजवान जहनों को खतरनाक नशा आवर अशिया से गुमराह कर रहे हैं।

0: स्टेशन पर मुनशियात को न कहीं जिंदगी को हाथे। आइए इस खतरे के खिलाफ मुख्तलिफ हो। नशे से पाक नौजवान एक मजबूत मालियाती पाकिस्तान। AMF का साथ दे, मुस्तकबिल बचाएं, कौम को मजबूत करें।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। FM 247/365

0: जिंदाबाद।
1: दिस सॉन्ग इज ब्रॉट टू यू बाय इको स्टार।
2: Like us on facebook.com/FM247365
3: FM247365

तक सा गया और चुप हो गया, मैं तक सा गया और चुप हो गया, मैं तक सा गया और चुप हो गया।

दुनिया से बेखबर जो कहना था कहने दे आंसू ये बहने दे यार बोले दे खबर बोल खोल दे हम जान भी दे देंगे तेरे कहने पे वक्त पूरा ना हो बेसबर मेरे लफ्ज़ तुझ पे कर।

चारों तरफ मची खलबली, इन्हें लगा कहानी मेरी सिर्फ दर्द भरी, हासिल मुझे बर्तरी होने लगी हड़बड़ी, खुद की कमाई पैनी गड़ी वो भी बर्बरी, अभी मजबूर नहीं लेकिन चली लग बड़ी, आके मेरे पैर पड़ी जिंदगी थी सैर बड़ी, सीखे हम गिर के चाहिए सबके खैर बड़ी, गहरे समंदर हम लेके चले।

कहां निकल चुका खुद की तलाश में, आते ख्याल खुद को रोक ले दकाश में, करके तमाशे तेरा दिल को दिला से, जबकि जानता हूँ खुद को मैं अच्छी तरह से, कैसे हट जाता पीछे मैं अपनी जगह से, कैसे छोड़ देता जीता मैं।

लौट जाते हैं दिल इश्क के दरबारों में, लौट जाते हैं आशिक बर्फ के अंगारों में। सुना है ढूंढने से खुदा भी मिल जाता है, शायद हम भी मिल जाते।

शराबी हूं, छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो मुझे शराबी हूं, आए फरिश्तों में बेहिसाबी हूं।